0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222290।

0: 9222 9333 या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
3: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
5: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद

हम सीखते हैं फिल्मों से, जिंदगी से, नोवेल से, न्यूज़पेपर से, किसी खराब एक्सपीरियंस से, अपने फेलियर से, और हाँ अपनी जिंदगी से तो हर रोज सीखते हैं। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं वास्तु कृष्णा हूं और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। दोस्तों, हम हर रोज सीखते हैं, सीखना हमारी फितरत होनी चाहिए। गड़बड़ हो जाए, फेल हो जाए, परेशानी आ जाए, डिस्टरबेंस आ जाए, आपका प्लान धरा का धरा रह जाए, आपकी सोच ही गड़बड़ हो जाए, ये क्या हो गया, आप खड़े रह जाएं, अकेले पड़ जाएं, ऐसी परिस्थितियां जिंदगी में अक्सर आती हैं, रोज आती हैं। जो लोग आपको भरोसा देंगे एक दिन तोड़ देंगे, आपको दिखाया कुछ और जाएगा और रिजल्ट फाइनली कुछ और हो जाएगा। ऐसे में हर रोज हमें सीखने की फितरत बनानी होगी, अपने एटीट्यूड को हमें लगातार सीखने का बनाना होगा। जब बदलेंगे मनस्थिति तो परिस्थिति बदल जाएगी। पॉजिटिव सोचने का अर्थ ये नहीं कि आप खराब परिस्थितियों की कल्पना भी ना करें, हमें कल्पना करनी चाहिए, कल्पनाओं के बाद प्लानिंग आती है। दोस्तों, आपका प्लान ए अगर फेल होता है तो प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है? कोई भी प्लान मास्टर प्लान नहीं हो सकता दोस्तों, हर प्लान को कोई ना कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है।

सीखते हैं हम अपनी जिंदगी से, सीखते हैं हम अपने हर कदम से। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। अक्सर हम यहां पर हमारे धर्म ग्रंथों की, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करते हैं और जिस तरह से भी हमें आगे बढ़ने में मदद मिले उसकी बात करते हैं। हम यहां पर बात करते हैं कि लाइफ में ग्रो कैसे होंगे, हम बात करते हैं कि खुद को बेहतर कैसे बनाएं। दोस्तों, जिंदगी में जब जब टेढ़ा टाइम आए, जब लगे कि आंगन टेढ़ा हो गया, अब नाच काम नहीं आ रहा है, जब लगे कि आपके सारे प्लान धरे के धरे रह गए, तो याद रखिए गड़बड़ हमसे हुई है कुछ। अगर कोई हमको बेवकूफ बनाकर चला जाता है तो गड़बड़ हमसे हुई है कुछ। हमेशा जब अपनी कमी ढूंढने की आदत हम बनाएंगे तो हम खुद को बेहतर कर पाएंगे। प्रिपरेशन और उस कॉन्फिडेंस को पैदा करती है जो दिखावा नहीं होता। बिना तैयारी के कॉन्फिडेंस आपका सिर्फ एटीट्यूड तो बन जाता है, लेकिन तैयारी वाला कॉन्फिडेंस खतरनाक रूप से मजबूत होता है। इसका क्या मतलब है? तैयारी कीजिए। जी हां दोस्तों, हर परिस्थिति के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए। आप तैयार हैं कि नहीं है? जब आर्मी लड़ने जाती है ना जंग में, तो वो तैयार होते हैं हर बुरी से बुरी परिस्थिति के लिए। जो कमांडर साहब होते हैं वो बहुत सारी बातों के बारे में सोचते हैं, प्लान बनाते हैं। पहले 4 सैनिकों को आगे भेजेंगे, उनके बैकअप के लिए भी एक प्लान होता है, फिर उनके बैकअप के लिए भी एक प्लान होता है, फिर एक मास्टर प्लान होता है, फिर उस मास्टर प्लान का भी एक बैकअप होता है। यानी सक्सेस तुक्के से नहीं मिलती, आपके प्लान का भी प्लान होना चाहिए। यहां पर चाणक्य नीति काम आती है। चाणक्य जो थे वो गुप्तचर रखा करते थे और अपने गुप्तचर का भी एक और गुप्तचर रखते थे, यानी वो किसी पर भी अंधा भरोसा नहीं करते थे। अगर जिंदगी में हमें आगे बढ़ना है ना, केवल एक प्लान के भरोसे नहीं बढ़ सकते। हर परिस्थिति के लिए क्या आप तैयार हैं या नहीं, प्लान फेल होने के लिए भी आप तैयार हैं या नहीं, नुकसान होने पर आपको रिएक्ट कैसे करना है, और जो आपका मास्टर प्लान है अगर वो बिगड़ता है तब आप क्या करेंगे, ये सोचना एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। ये सोचना आपको तैयार करता है, रेडी करता है। फिल्में सिखाती हैं, सीरियल भी सिखाते हैं, इंसान सिखाते हैं, धोखेबाज दोस्त भी सिखाते हैं, टूटते हुए संबंध और रिश्ते भी सिखाते हैं। लोगों का भरोसा जब टूटता है ना, वो भी सिखा कर जाता है। आज आप जो हैं वो कल नहीं थे और परसों जो थे वो आज नहीं है। यानी आप हर रोज सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। यही एटीट्यूड एक दिन आपको आगे बढ़ाएगा।

कैसे सीखें और जिंदगी में आगे कैसे बढ़ें, यही बातें कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है वास्तु कृष्णा। दोस्तों, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। जिस व्यक्ति को तुम पसंद नहीं करते हो ना, उसके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी क्षमता जरूर हो सकती है जो तुम्हारे किसी काम आ जाए। इसीलिए दुश्मनों से भी सीखना शुरू कर दो। सीखना ही हमारे सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और एक और बात, प्लान इतना रिजिड मत बनाओ कि रियलिटी बदलने पर तुम टूट जाओ। अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट योजना से प्यार नहीं करता, वो रिजल्ट से प्यार करता है। यानी परिस्थिति बदलने पर स्ट्रेटेजी बदल दो। दोस्तों, कई बार हम अपने प्लान से इतना प्यार कर बैठते हैं, मैं तो इस काम को ऐसे ही करूंगा, ऐसे ही करना है, और हम इतने रिजिड हो जाते हैं और हम रिजल्ट की परवाह नहीं करते, जबकि हमारा मकसद रिजल्ट तक, मंजिल तक पहुंचना है। हमारा फाइनल रिजल्ट कैसा होगा उस दिन की कल्पना कीजिए। वहां पहुंचने के लिए अगर रास्ता बदलना भी पड़े तो बदल दीजिए। आपका प्लान ए काम ना आए तो प्लान बी पे लग जाइए, प्लान बी का भी प्लान सी रखिए। जैसे मैंने पहले भी बताया, आचार्य चाणक्य कभी जो उनके जो फॉलोअर्स होते थे या जो उनके सैनिक होते थे या जो उनके गुप्तचर होते थे, अपने गुप्तचर का, अपने राजा का भी एक गुप्तचर रखते थे, फिर गुप्तचर का भी एक और गुप्तचर, फिर उसका भी एक गुप्तचर रखते थे। वो विषकन्या बनाते थे ना, वो विषकन्या तैयार करते थे और उन विषकन्याओं का भी एक गुप्तचर रखते थे। मतलब क्या है इस बात का? हमेशा हमें ये सीख लेना चाहिए, जिंदगी में अंधा भरोसा तो किसी पर नहीं करना, अपने ऊपर भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने आप को इंप्रूव करना जरूरी है। दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि कुछ ना कुछ कमी हमारे भीतर है। अगर हम ये सोच लेंगे ना कि हाँ कुछ कमी तो होगी हमारे अंदर भी, तभी तो हम उसको ठीक करेंगे, और अगर हम उसको ठीक करेंगे तो हम खुद का ही फायदा करेंगे। यानी हम खुद की कमियों को मद्देनजर रखते हुए अपना

दिमाग शांत सबसे कठिन परिस्थितियों में सबसे महंगा हथियार है आपका। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम, आपका स्वागत करता हूं। यह है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। दोस्तों, शांत दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। पैसा, ताकत और कॉन्टैक्ट्स बाद में काम आते हैं, संकट में सबसे पहले काम आता है मेंटल कंट्रोल, आपका दिमाग। आप रिएक्ट कैसे करेंगे, आप क्या सोचते हैं, इसीलिए शांत दिमाग रखिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने शरीर को ठीक रखिए, थोड़ा दौड़िए, साइकिलिंग कीजिए, अच्छे गाने सुनिए, खुश रहिए, परिवार को समय पर समय दीजिए, बच्चों के साथ खेलिए, माता पिता के साथ बैठिए, हर वो काम कीजिए जो आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है। ऐसा करने से आप शांत होंगे। अगर आपकी जिंदगी में एक भी बात को लेकर रिग्रेट रह जाएगा ना, मान लीजिए आपने कमाई पर ज्यादा ध्यान दिया, शरीर छूट गया। अक्सर हम यही तो करते हैं, हम काम में इतना डूब जाते हैं कि अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, रिग्रेट पैदा होता है और उससे स्ट्रेस पैदा होता है, और जिसको स्ट्रेस होता है उसका दिमाग कभी शांत नहीं रहता। शांत

दिमाग हर इंसान का सबसे बड़ा हथियार बनता है। हर परिस्थिति में सबसे पहले अगर आप किसी हथियार का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका दिमाग होता है। उसके बाद आप किसी को कोई काम दे सकते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपका पैसा, आपकी पावर सब बाद में आते हैं। पहले काम आता है आपने रिएक्ट कैसे किया, और वो होता है शांत दिमाग से।

गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत करता हूं सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। आपकी पसंद के भजन भी यहां पर चला सकते हैं अगर आप हमें फोन करेंगे 9639012111 पर। वैसे दोस्तों, यहां पर हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि कुछ बातें हम ऐसे डिस्कस कर लें आपस में जो बहुत जरूरी हैं हमारी जिंदगी के लिए। हमारी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी तो हम ही होते हैं दोस्तों। कहते हैं कि जान है तो जहान है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा ध्यान रखिए अपनी सेहत का। आपका शरीर है ना, तभी आप हैं। तभी तो कहा गया है एक शांत दिमाग, एक अच्छा दिमाग एक अच्छे शरीर में रह सकता है। अपने शरीर को ठीक रखिए, अपने दिमाग को शांत रखिए, ठीक रखिए। उसके लिए मेडिटेशन कीजिए, घूमिए फिरिए, तरोताजा जिंदगी का आनंद लीजिए। जितना ज्यादा जिंदगी का आनंद लेंगे और जितना ज्यादा खुश रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप और भी बेहतर रिजल्ट देने वाले इंसान बनते चले जाएंगे। अगर आप दिन रात टेंशन में रहेंगे, परेशान रहेंगे, हैरान होकर घूमते रहेंगे, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। जितने ज्यादा क्रिएटिव आप रहेंगे ना, उतना ही ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसीलिए अपने पेशेंस को कंट्रोल में रखने के लिए सबसे जरूरी हथियार हमारा दिमाग होता है। हमारा दिमाग शांत तभी रहता है जब हम स्ट्रेस नहीं लेते हैं। स्ट्रेस तब नहीं लेते जब परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में रहती है, और वो तब कंट्रोल में रहती हैं जब हम हर परिस्थिति के लिए एक प्लान रखते हैं। हमें पॉजिटिव रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंख बंद कर लेता है, यह पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। आंख पे पट्टी बांधना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। आंखों को खोलकर बिल्ली को देखना है, मतलब डर को देखना है, सामना करना है, परिस्थितियों से लड़ना है, और हर परिस्थिति के लिए एक प्लान होना चाहिए, तभी आप मेंटल फ्री हो पाएंगे।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। दोस्तों, हम जिंदगी में हर किसी से सीख सकते हैं। हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रिएक्ट मत करो, पहले ऑब्जर्व करो। जो इंसान तुरंत प्रतिक्रिया देता है वो परिस्थिति का गुलाम बन जाता है। पहले देखो, समझो, फिर जवाब दो। इसीलिए तो कहा गया है कि पहले तोलो फिर मुंह से बोलो। जिस चीज से हमें डर लगता है तो उसका अध्ययन करना चाहिए। डर अज्ञानता से पैदा होता है। जिस समस्या को गहराई से समझ लेते हो उसका डर आधा तुरंत खत्म हो जाता है। इसीलिए दो बातें हमेशा हमें याद रखनी, रिएक्ट नहीं करना, ऑब्जर्व करना है, और डरना नहीं है, अध्ययन करना है। जिस चीज से, जिस बात से, जिस परिस्थिति से डर लग रहा है, पहले उस पर थोड़ा ध्यान दो, रिसर्च करो, ऑब्जर्व करो, और हां, ठीक करो, तभी तो आगे बढ़ेंगे।

आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। रुद्रम चामकम, ये पावरफुल मंत्र आपके जीवन से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को निकाल कर बाहर फेंक देगा। श्री रुद्रम चमकम संपूर्णम।

जब आपको ये पता होता है कि आपको आखिर चाहिए क्या, तो दुनिया में कोई आपको भटका नहीं सकता। नमस्ते, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आपका स्वागत करता हूं फिर से सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। आपका गोल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, जैसे लेजर होती है ना, लेजर की तरह शार्प होना चाहिए। आपका टारगेट, आपका गोल आपको पता होना चाहिए, कोई आपको भटका नहीं सकता। कोई भी परिस्थिति फिर आपके ध्यान को बिगाड़ नहीं सकती, भटका नहीं सकती। कोई इंसान आकर आपके काम बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए आपका उद्देश्य जो भी है जिंदगी में, आपका टारगेट है, आपका गोल है, वो क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहां पर कब क्या कदम उठाना है, तो ऐसे में हमारी स्पीड भी बढ़ जाती है और हमें पता भी होता है और हम कभी भी खुद परेशान भी नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ी जीत अपने दिमाग पर कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रखना है। परिस्थितियां हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, याद रखिए, लेकिन आप कैसे सोचेंगे, कब बोलेंगे, कब चुप रहेंगे, कब निर्णय लेंगे और दूसरों के चक्कर में पड़कर बहुत ज्यादा गुस्से में या बहुत ज्यादा प्यार में भी नहीं पड़ जाएंगे, ये सब आपके हाथ में होगा, तो फिर आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता।

सुनकर इतना ज्यादा शोर, पार्वती आई उस ओर। डरकर माता उमा के आगे दुम दबाकर मूषक भागे, पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक रहे हैं भूल के तन मन।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA Honors Hindi, BA Honors English, MA Hindi, MA English। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
5: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
6: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
5: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
7: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलता

देती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभ आरती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर शुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 शुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजी वंशी, और लेकर आई हूं आज आपके लिए बहुत ही खास बातें। लेकिन प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो जानकारी है जो मैं आज आपसे साझा करने वाली हूं, वो स्मार्ट एनजीओ के सौजन्य से है, और इस प्रोग्राम का नाम है सेहत सही लाभ कई, जिसमें हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपकी सेहत से रिलेटेड होती हैं। वहीं आपको हम समय समय पर जानकारी देते हैं कि आप किस तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, या उन महिलाओं के बारे में बात करते हैं जो गर्भावस्था में हैं इस वक्त, और किस तरीके से वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हैं और अपने खाने पीने की ध्यान रख सकती हैं। और साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं कि परिवार किस तरीके से उस महिला की मदद कर सकता है। देखिए, ये सफर बड़ा ही कठिन होता है, तो ऐसे में परिवार की भागीदारी और उनकी जिम्मेदारी काफी मायने रखती है। जैसा कि आपको पता है कि गर्भावस्था के दौरान महिला के स्वास्थ्य का ख्याल रखना

0: माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसी दौरान शरीर में कई तरीके के बदलाव आते हैं, जिसमें से एक आम समस्या होती है खून की कमी, जिसे हम एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। और अक्सर इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो हम जाने अनजाने ऐसे ही जाने देते हैं। हमें लगता है क्योंकि गर्भावस्था में ऐसा होता ही है, तो ये एक आम बात है। लेकिन दोस्तों, कई बार सिम्टम्स आम होते हुए भी हमें समझ नहीं आता कि वो किस ओर इशारा कर रही हैं। तो चलिए कुछ इस बारे में आज आपसे जानकारी साझा कर देती हूँ। देखो, गर्भावस्था के दौरान जो शरीर में खून की कमी आती है वो इसलिए आती है क्योंकि प्लाज्मा की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक, और जिससे हीमोग्लोबिन को बनाए रखने के लिए अधिक आयरन की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को। और आप मानो कि अगर शरीर को पर्याप्त आयरन ही नहीं मिलेगा तो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो अपने आप कम होता चला जाता है। और इसी कंडीशन को, इसी स्थिति को एनीमिया के नाम से जाना जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जो आम होकर भी आम नहीं होते, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। इस अवस्था में एक महिला को बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो सकती है, कमजोरी उसे महसूस हो सकती है, उसके चेहरे पर नाखूनों या आंखों के नीचे पीलापन आपको देखने को मिल सकता है, उसका सांस फूल सकता है या उसको बार बार चक्कर आने की समस्या हो सकती है, सरदर्द उसे हो सकता है और हाथ पांव उसके ठंडे पड़ सकते हैं। और ये वही सिम्टम्स हैं, ये वही संकेत हैं जिन्हें हम अक्सर यूं ही समझकर कि ऐसा तो होता ही है, ये समझकर हम टाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सिम्टम्स को टालना नहीं है। जब भी ये लक्षण आपको दिखाई दे, एक बार जरूर अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर एक बार जरूर अपनी जांच कराएं, क्योंकि जांच करा लेंगे तो आपके मन का जो वहम है वो भी निकल आएगा और साथ ही साथ जो आपकी स्वस्थ होने की अपडेट है वो भी आप तक पहुंच जाएगी। देखो, खून की कमी जो है वो आपके खानपान से होती है। अगर आप अपने खानपान का ध्यान रखेंगे, अपनी सही से देखभाल रखेंगी, तो खून की कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको बस ध्यान देना है अपने आहार पर, और आपका जो आहार होना चाहिए वो होना चाहिए आयरन से भरपूर, जिसमें कि आप पालक, मेथी, चुकंदर और बाकी की जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो जरूर खाएं। साथ ही साथ जो फल होते हैं, खास तौर से अनार, खजूर, मुनक्खा और गुड़, ये भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। और जो आपकी रसोई घर में दालें मौजूद होती हैं वो तो प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स होती हैं, तो रोजाना नहीं तो आप एक दिन छोड़ करके दाल जरूर खाएं। काला चना आप खा सकती हैं, वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और राजमा भी बहुत अच्छा रहता है, आयरन से भरपूर रहता है। वहीं आपको बता दूं कि विटामिन सी भी बड़ा ही जरूरी हो जाता है ऐसे टाइम में। तो आयरन को शरीर में अच्छी तरीके से सोखने के लिए विटामिन सी की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए आप नींबू खा सकते हैं, आंवला, संतरा और टमाटर, इसको आप अपने जो खाने की थाली है उसमें जरूर शामिल करें। यानी कि जो खट्टी चीजें होती हैं, जो तासीर जिनका नेचुरली ही खट्टा होता है, आप उसको जरूर खाएं। और आयरन की गोलियां जो डॉक्टर देते हैं उसको आप सही समय पर लें, फॉलिक एसिड सही पर लें और नियमित रूप से उनका सेवन करें। ऐसे ना करें कि आज हमने खा ली, कल को हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये लापरवाही होती है और इसके जो परिणाम होते हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं होते, और बाद में आपको लगता है कि हमने तो दवाइयाँ खाई थी, लेकिन आप एक शब्द भूल जाते हैं कि क्या आपने नियमित रूप से वो दवाई खाई भी थी या आपने छोटी सी लापरवाही बरती थी अपनी सेहत के साथ। तो अपनी सेहत के साथ कोई भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। इसी के साथ एक बात आपको जरूर बता दूं कि जो महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं और आयरन की गोलियां वो खा रही हैं, उसको आप बिल्कुल भी चाय के साथ ना लें, कॉफी के साथ भी बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आयरन को आपके शरीर में सोखने से रोक लेते हैं। इसे या तो आप सादे पानी से ले सकते हैं या नींबू पानी के साथ आप इसको लेंगी तो और भी अच्छा हो जाएगा। और किस तरीके से आप गर्भावस्था में अपना देख रेख कर सकती हैं और क्या इसके खास तरीके हो जाते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आपको बात बता देती हूँ। आपको सबसे पहले तो नियमित जांच करानी है, यानी कि डॉक्टर से समय समय पर आपको जांच करानी है, ANC विजिट करानी है, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच आपको नियमित रूप से करानी है। साथ ही साथ डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही जरूरी अल्ट्रासाउंड कराने हैं, अपनी मनमर्जी से कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराना है। अपनी जो डाइट है वो आपको बैलेंस लेनी है। प्रोटीन के लिए आप दूध, पनीर, दही, दालें, अगर अंडा खाती हैं तो अंडा भी आप खा सकती हैं। कैल्शियम के लिए, क्योंकि आपके बच्चे के विकास के लिए भी आपको कैल्शियम चाहिए होगा, तो वो आपको दूध और डेयरी उत्पाद से ही मिलता है, तो इसलिए वो आप जरूर खाएं। इसी के साथ दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर आपको पीना है। और दोस्तों एक खास बात और हो जाती है, मैं आपको बता दूं कि रात में कम से कम आपको 8 घंटे की नींद लेना जरूरी हो जाता है और दिन भर में भी आपको समय निकाल करके 1 से 2 घंटे आराम जरूर करना है, क्योंकि जितना आप आराम करेंगी उतना ज्यादा आपका जो शरीर है वो अच्छा महसूस करेगा। और सोते समय एक चीज आपको बड़ी ध्यान में रखनी है, बाईं करवट यानी के लेफ्ट साइड होकर के आपको सोना है। इस पोजिशन को सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे बच्चे तक रक्त संचार अच्छा रहता है। और ये नहीं करना है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप बिल्कुल रेस्ट मोड पर चले जाएं। लाइट एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है, हल्का व्यायाम आपको जरूर करना है। डॉक्टर की सलाह लेकर के आप वॉक यानी के टहल सकती हैं या प्राणायाम भी कर सकती हैं। भारी सामान उठने से आपको बचना है और बहुत ज्यादा जो झुकने वाले काम होते हैं उनसे भी बचना है। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ बातें मैं समय समय पर आपके लिए लेकर आऊंगी। और आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में जो जानकारी आपसे साझा की जा रही है वो स्मार्ट एनजीओ के सौजन्य से आपको कराई जा रही है उपलब्ध, और इस प्रोग्राम का नाम है सेहत सही लाभ कई। अंत में जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। देखो अगर गर्भवती महिला के पेट में तेज दर्द या ब्लीडिंग होती है यानी कि खून आना शुरू हो जाता है, इस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी जैसा आपको महसूस हो रहा है, ऐसे में भी जरूर एक बार अपने डॉक्टर से बात करें। चेहरे या हाथ पैरों पर अचानक से बहुत ज्यादा सूजन आ गई है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से जरूर बात करनी है। और बच्चे की हलचल अगर कम महसूस आपको हो रही है, इस बारे में भी आप जरूर डॉक्टर से बात करें, या आप अपने आसपास की आशा या आंगनवाड़ी वाली दीदी से भी बात कर सकती हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं फिर से लौटूंगी ऐसी ही कुछ सेहत भरी बातों के साथ। अभी दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद, बाय बाय। ऐसे ही अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। सेहत सही लाभ कई, खुशियों से भर जाए जिंदगी नई।
1: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है

जय हिंद, आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और अब आप सुनेंगे ये खास प्रस्तुति जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ।

दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीबी नामक रोग के बारे में, यानी क्षय रोग। अगर समय पर पहचान हो जाए तो टीबी का पूरा इलाज संभव है, पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इस बीमारी का नाम क्षय रोग, टीबी रोग या ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। ये सबसे अधिक फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन शरीर के अन्य अंगों जैसे हड्डियों, दिमाग, किडनी और रीढ़ की हड्डी में भी ये हो सकता है। हमारे एक एक्सपर्ट डॉक्टर के अनुसार नाखून और बाल को छोड़कर शरीर के किसी भी हिस्से में ये बीमारी हो सकती है। टीबी फैलती कैसे है? जब टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता, छींकता या जोर से बोलता है तो हवा में छोटे छोटे कीटाणु फैल जाते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति इन्हें सांस के साथ अंदर ले ले तो उसे भी ये संक्रमण हो सकता है। ध्यान रखें, टीबी हाथ मिलाने से, साथ बैठने से, खाना साथ में खाने से या एक दूसरे के कपड़े छूने से नहीं फैलती। टीबी के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं दोस्तों, 2 सप्ताह या उससे अधिक समय तक लगातार खांसी रहती है, बलगम में खून आता है, बुखार विशेषकर शाम के समय चढ़ता है, रात में ज्यादा पसीना आता है, तेजी से वजन घटता है, भूख कम लगती है, कमजोरी और थकान ज्यादा महसूस होने लगे। यदि ये लक्षण दिखाई दें, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर संपर्क कीजिए। सरकार पूरी तरह से निःशुल्क आपको इसका पूरा इलाज मुहैया कराती है। सरकार टीबी के मरीजों की किस प्रकार और मदद करती है? सबसे पहले सरकार का एक लक्ष्य है टीबी मुक्त भारत। सरकार द्वारा टीबी की जांच निशुल्क की जाती है, पूरी दवा बिल्कुल निशुल्क मुफ्त दी जाती है, मरीज का इलाज और नियमित फॉलोअप भी किया जाता है। इलाज के दौरान पोषण के लिए निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत मरीजों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है ताकि वे पौष्टिक भोजन कर सकें। कई स्थानों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता मरीज के घर तक दवा पहुंचाते हैं और दवा नियमित लेने में भी मदद करते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा मरीज आपको दिखता है जिसको टीबी हो सकती है या किसी को टीबी है, उसकी मदद आपको भी करनी चाहिए। टीबी की दवाएं सरकारी अस्पताल पर बिल्कुल मुफ्त दी जाती हैं। आप इन्हें हमेशा समय से लेकर तयबद्ध तरीके से खाएं। इलाज को पूरा करना है, कभी भी इलाज को बीच में नहीं रोकना है। एक बार टीबी की दवा शुरू होने पर अगर आप इलाज बीच में रोकते हैं तो कुछ समय बाद टीबी वापस लौट कर आती है और पहले से ज्यादा भयानक रूप के साथ आती है, यानी पहले जो टीबी हुई थी उससे भी ज्यादा खतरनाक इस बार ये बनकर लौटी है। बीमारी दोबारा लौट सकती है, पहले से ज्यादा गंभीर हो सकती है, दवाओं का असर भी कम हो जाता है और इस बार टीबी को नाम दिया गया है MDR टीबी, यानी पहले से भी भयानक टीबी। इसीलिए कभी भी टीबी बीमारी की दवाइयों को रोकना नहीं है, इलाज पूरा करवाना है। डॉक्टर जितने महीने जितने समय दवा खाने के लिए बोले, इलाज पूरा कराएं। आपकी तमाम जांचें बिल्कुल निशुल्क सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हैं, सभी दवाइयां सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हैं। सरकार मरीज को पैसे से भी मदद करती है, दवाइयों से भी मदद करती है और समय समय पर निक्षय पोटली यानी के खाने के लिए प्रोटीन युक्त कुछ चीजें भी देती है। तो आगे से हमेशा हमें ध्यान रखना है, लगातार खांसी रहे तो जांच कराएं, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढक लीजिए, घर में ताजी हवा और धूप आने जाने का रास्ता हमेशा होना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, धूम्रपान, तंबाकू और शराब से दूरी बनानी है। डॉक्टर ने जो बात बताई है, जो दवाइयां बताई है, उनको नियमित रूप से और पूरा लेना है। कोई भी दवा बीच में नहीं रोकनी, अपनी मर्जी से कोई दवा बढ़ानी नहीं है, कोई दवा घटानी नहीं है। मरीज के संपर्क में जो लोग आ गए हैं उनको भी अपनी जांच करानी चाहिए। अगर किसी परिवार में किसी को टीबी है, उस परिवार के तमाम लोगों की जांच निशुल्क होती है, करानी चाहिए। छोटे बच्चों की भी जांच करानी चाहिए और कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और अंतिम संदेश, याद रखिए, टीबी छिपाने की नहीं, इलाज कराने की बीमारी है। बहुत से लोग टीबी को छुपा कर रखते हैं।

0: जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। और अब आप सुनेंगे एक खास प्रस्तुति जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ, और ये कार्यक्रम है सेहत सही लाभ कई। मध्यम और गंभीर एनीमिया कब और कैसे IVFCM मदद कर सकता है, आज का टॉपिक यही है। नमस्कार, आपका स्वागत करता हूँ सेहत सही लाभ कई के इस अगले अंक में। मुझे तो आप जानते हैं, मेरा नाम है वास्तु कृष्णा। पिछले कार्यक्रमों में हमने इसी विषय में बात की है कि गर्भावस्था में खून की कमी यानी एनीमिया, उसकी पहचान, जांच, IFA, MMS और पौष्टिक भोजन के बारे में। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आज का सवाल है, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया निकल आए तो क्या करना चाहिए? क्या केवल कमजोरी दूर करना ही लक्ष्य है, या माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है? और सबसे महत्वपूर्ण, IVFCM क्या है और किन गर्भवती महिलाओं के लिए डॉक्टर उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर से मौजूद हैं सेहतिया सिंह जी और टीकन देवी जी। तो सेहतिया सिंह जी और टीकन देवी जी, दोनों का मैं स्वागत करता हूँ
1: जी। धन्यवाद धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम
0: जी। सेहतिया सिंह जी, बताइए जरा, शुरुआत एक आसान सवाल से करते हैं। पिछले कार्यक्रम में आपने हल्के, मध्यम और गंभीर एनीमिया का जिक्र किया था, एक बार फिर से सरल भाषा में समझा दीजिए।
1: जरूर बता देंगे जी। जब खून

0: की जांच में हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का एनीमिया कहते हैं, और इसके बाद आगे बात करें तो 7 से 9.9 ग्राम के बीच हो तो इसे मध्यम एनीमिया कहते हैं, और 7 ग्राम से कम हो तो यह गंभीर एनीमिया माना जावे है।
1: यानी जितना कम हीमोग्लोबिन उतनी ही ज्यादा चिंता।
0: हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इसका असर गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भ में पल रहे बच्चों दोनों पर पड़े है।
1: तो क्या मध्यम और गंभीर एनीमिया इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए?
0: बिल्कुल ना जी, समय पर पहचान और इसका इलाज घना जरूरी है।
1: दोस्तों अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, और ये कहानी हमको हमारी टीकन देवी जी सुनाएंगी।
2: देखो जो आज मैं कहानी सुनाने वाली हूँ ना आप सभी को
1: जी,
2: वो असल में सुनीता की है। अब मैं आपको बताऊँ, सुनीता का चल रहा था 7वां महीना।
1: अच्छा जी।
2: कुछ दिनों से उसे बार बार चक्कर आ रहे थे।
1: अच्छा।
2: तो थोड़ी दूर जब भी चलक रही तो उसे सांस फूलने की बीमारी सी हो गई।
1: अच्छा।
2: उसे टेंशन हो गई, घर का काम भी मुश्किल लगने लगा।
1: अच्छा।
2: जने जने कितना काम हो। घर वाले सोचते थे कि ये तो गर्भावस्था में होता ही है, तो ज्यादा कुछ टेंशन की बात ना है। लेकिन एक ANC जांच के दौरान खून की जांच की गई, और रिपोर्ट में पता क्या चला?
1: क्या चला?
2: उसे मध्यम एनीमिया था।
1: ओ माय गॉड, यानी फिर क्या हुआ उसके बाद?
2: फिर क्या, स्वास्थ्य केंद्र में उसकी स्थिति को समझा गया, आगे सलाह भी दी गई उसे, और परिवार को भी समझाया गया कि ये केवल कमजोरी ना है बल्कि उसे इलाज की जरूरत है।
1: सेहतिया सिंह जी, अगर किसी गर्भवती महिला में मध्यम या गंभीर एनीमिया पाया जाता है तो डॉक्टर को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, या वो देते हैं ध्यान?
0: देखो ऐसा होगा जी, डॉक्टर पहले स्थिति की गंभीरता को देखेंगे। अगर एनीमिया आयरन की कमी से है तो उपचार उसी हिसाब से तय होगा। हल्के एनीमिया के मामलों में डॉक्टर इलाज के लिए आयरन की गोली दे सकते हैं।
1: अच्छा।
0: यू हो जा,
1: यानी हर गर्भवती महिला को IVFCM नहीं दिया जाता?
0: जी बिल्कुल, IVFCM हर किसी के लिए नहीं है, ये एक चिकित्सीय निर्णय है जो जांच और मूल्यांकन के बाद ही लिया जा सके है।
1: ऐसा है ना सेहतिया जी, अब बहुत सारे दोस्त हमारे सुन रहे हैं लेकिन उन सबको नहीं पता कि ये IVFCM होता क्या है, तो मैं चाहता हूँ कि आसान भाषा में हमारे तमाम मेरठ के श्रोताओं को, हमारे दोस्तों को जरा समझा दीजिए कि ये IVFCM होता क्या है।
0: बिल्कुल बतावेंगे जी, और आसान भाषा में समझावेंगे, थारी वाली भाषा में, हमारी वाली भाषा में। देखो कई बार लोग सोचते हैं कि IVFCM कोई अलग दवा है या कोई जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सरल भाषा में समझें तो ये शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने का एक तरीका है, जिसमें आयरन नस के रास्ते दिया जाता है। जब किसी गर्भवती महिला में जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पाया जावे है, या डॉक्टर को लगे है कि तेजी से सुधार जरूरी है, तब यो वाला विकल्प चुना जावे, इसका विचार करा जावे इस पे।
1: अच्छा, यानी ये एक सामान्य कमजोरी का इलाज नहीं है?
0: बिल्कुल जी बिल्कुल, यो बहुत महत्वपूर्ण बात है। केवल थकान महसूस होने से किसी को IVFCM नहीं दिया जाता। पहले जांच होती है, खून की रिपोर्ट देखी जाती है, महिला की स्थिति को समझा जाता है, उसके बाद डॉक्टर निर्णय लेते हैं।
1: तो इसका मतलब ये हुआ कि IVFCM हमेशा जांच पर आधारित उपचार होता है।
0: बिल्कुल सही कहा जी आपने, यही कारण है हम बार बार कहते हैं पहले जांच, फिर सलाह, फिर उपचार।
1: और क्या ये सही है कि IVFCM अपेक्षाकृत कम समय में दिया जा सकता है?
0: हाँ जी, स्वास्थ्य सुविधा पर डॉक्टर और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में यो दिया जाता है। इसके बाद कुछ समय तक महिला को देखा भी जावे है, और कुछ स्थिति सामान्य रहे तब आगे की कार्यवाही भी होवे। फिर
1: क्या ये अस्पताल में भर्ती होकर ही कराया जा सकता है?
0: ना जी, ऐसा जरूरी तो ना है, लेकिन यो हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर की निगरानी में स्वास्थ्य सुविधाओं पर ही किया जा सके।
1: यानी आपका मतलब ये है कहने का कि अपने मन से उपचार करवाना ठीक नहीं, जैसे कि अक्सर हम लोगों की आदत होती है ना कि अपने खुद से मन से डॉक्टर बन जाते हैं और कोई भी इलाज करवा लिया, कोई भी ट्रीटमेंट ले लिया।
0: ना जी ना, ऐसा बिल्कुल ना करना। सही रास्ता हमेशा जांच और डॉक्टर की सलाह और स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख में हो तो वही बढ़िया।
1: टीकन देवी जी आप क्या कहेंगी?
2: देखो मैं भी एक बात जोड़ना चाहूँ, कई बार क्या होता है परिवार डर जाता है कि ड्रिप लगेगी तो बीमारी बहुत बड़ी हो सके, लेकिन ऐसा जरूरी ना है। IVF CM जो होता है वो एक प्रभावी उपचार विकल्प के रूप में समझा जा सके, लेकिन ये केवल डॉक्टर की सलाह और निगरानी में ही दिया जाना चाहिए।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। सेहतिया जी, एक बात और, कई श्रोता हमारे लिसनर्स ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर आखिर IVF CM पर विचार ही क्यों करते हैं।
0: इसका भी बता दें मैं जी।
1: जी
0: देखो, बात यो है क्योंकि मध्यम या गंभीर एनीमिया केवल कमजोरी का विषय ना है, यो माँ और बच्चों दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सके, माँ और बच्चे दोनों के लिए तो हुआ है यो। इसलिए जब डॉक्टर को लगे है कि आयरन की कमी को जल्दी और प्रभावी तरीके से ठीक करना जरूरी है, तब वो IVF CM जैसे विकल्प पे विचार कर सकते हैं।
2: और बिल्कुल सही कहा आपने सेहतिया जी। और मैं एक बात परिवारों से भी कहना चाहूँ
1: जी
2: कि अगर डॉक्टर IVF CM की सलाह देवे तो उसे लेकर डरे ना, अफवाहों में ना पड़े, पहले पूरी जानकारी लें, सवाल पूछें जो भी आपके मन में आ रहे हैं, और स्वास्थ्य कर्मी की बात को भी समझने की कोशिश करें।
1: जी सेहतिया जी, क्या IVF CM का उद्देश्य केवल गर्भवती महिला की कमजोरी को दूर करना होता है?
0: ना जी, ऐसा तो ना है। इसका बड़ा उद्देश्य जो है वो माँ और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य परिणाम में योगदान देना है, मतलब उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। और जब एनीमिया का समय पर इलाज होता है तो गर्भावस्था को सुरक्षित रखने में इससे बढ़िया मदद मिल जा।
1: यानी फायदा केवल माँ को नहीं बच्चे को भी हो सकता है।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल, स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
1: जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, इलाज में परिवार की क्या भूमिका है? टीकन जी आप बताएं इसके बारे में।
2: जी बिल्कुल बताऊंगी। देखो, परिवार की बहुत बड़ी भूमिका। पहला, गर्भवती महिला की कमजोरी को गंभीरता से लें। दूसरा, स्वास्थ्य केंद्र में नियमित रूप से महिला को लेके भी जाएं।
1: अच्छा,
2: उसमें बिल्कुल देरी ना करें।
1: ठीक है।
2: और तीसरा, जांच में साथ जाएं, उसे अकेले ना भेजें।
1: अच्छा।
2: चौथी बात मैं बताऊं आपको, गोली समय पर हो और सही तरीके से उसकी महिला की मदद करें।
1: ठीक है।
2: और इससे अगली बात ये कि किसी परेशानी की स्थिति अगर हो रही है तो स्वास्थ्य कर्मी से बात जरूर करें। और आगे बताऊं, अगर डॉक्टर IVF CM की सलाह दे रहा है ना, तो उसे स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में मदद भी करें।
1: अच्छा।
2: क्योंकि इसमें कमजोरी भी आ जा जब एनीमिया हो जा। और सातवां बताऊं आपको,
1: बताओ,
2: घर में अच्छा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करावे उसे।
1: अच्छा।
2: और आठवां, महिला को उसकी स्वास्थ्य स्थिति के लिए दोष न दें बार बार।
1: सचमुच एनीमिया का इलाज केवल स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी है। अगर किसी गर्भवती महिला को IVF CM दिया जाता है तो क्या आगे भी निगरानी होती है सेहतिया जी?
0: बिल्कुल होवे जी, निगरानी होनी चाहिए, फॉलोअप होना चाहिए। देखो, अंग्रेजी का शब्द आ गया मेरे मुंह से
1: जी।
0: आगे बात करूं तो महिला की पुनः जांच होनी चाहिए, आवश्यकता होने पर आगे की सलाह दी जाएगी उसे। ठीक है, पूरी प्रक्रिया स्वास्थ्य केंद्र की निगरानी में होती है, ये सबसे बढ़िया बात है।
1: यानी उपचार के बाद भी संपर्क बनाए रखना बेहद जरूरी होता है।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल, संपर्क बनाए रखो जी।
1: चलिए दोस्तों, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले IVF CM से जुड़ी कुछ आम धारणाओं के बारे में बात करते हैं। अगर किसी गर्भवती महिला को IVF CM दिया जा रहा है तो उसकी हालत बहुत खराब होगी। सेहतिया सिंह जी आप क्या कहेंगे?
0: गलत। IVF CM देने का निर्णय जांच और चिकित्सीय आवश्यकता के आधार पर लिया जाता है। ठीक है, केवल ड्रिप लगने का मतलब यो ना है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है।
1: यानी IVF CM हर गर्भवती महिला को लेना चाहिए। टीकन जी आप क्या कहेंगे?
2: ना ना, ऐसा भी ना है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। IVF CM जो होता है वो हर महिला के लिए नहीं होता, ये केवल उन्हीं परिस्थितियों में दिया जावे जहां डॉक्टर को उसकी आवश्यकता दिखाई दे।
1: अगर IVF CM लग गया तो आगे किसी जांच या फॉलोअप की जरूरत नहीं रहती?
0: क्यों ना रहती जी, ये तो गलत बात है। फॉलोअप तो जरूर रखना चाहिए, निगरानी जरूर रखनी चाहिए।
1: अच्छा।
0: उपचार के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र की सलाह के अनुसार जांच और निगरानी की जाती है, ऐसा नहीं होता।
1: बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं क्योंकि घर पर ही डॉक्टर बुला लेते हैं, घर पर ही सारी चीजें कर ले, तो क्या IVF CM घर पर भी लगवाया जा सकता है?
2: देखो मैं बताऊं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। ये हमेशा स्वास्थ्य सुविधा पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर की निगरानी में ही दिया जावे, घर पर ये बिल्कुल नहीं होने का।
1: यानी अगर किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को IVF CM दिया गया था तो मुझे भी वही उपचार लेना चाहिए सेहतिया जी?
0: ना गलत है यो, ऐसा भी ना है। हर गर्भवती महिला की स्थिति अलग अलग हुए है, उपचार हमेशा उसकी जांच और डॉक्टर की सलाह के अनुसार तय होता है।
1: वाह वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जानकारी आप दोनों ने यहाँ पर दी। बहुत बहुत धन्यवाद सेहतिया जी और टीकन जी। इसी के साथ ये प्रोग्राम दोस्तों समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं, पर चलते चलते आज की चर्चा से तीन महत्वपूर्ण बातें याद रखने योग्य हैं। पहली, गर्भावस्था में कमजोरी, चक्कर या सांस फूलने को नजरअंदाज मत कीजिए। दूसरी, नियमित ANC जांच और खून की जांच करवाइए। तीसरी, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया मिलता है तो स्वास्थ्य केंद्र की सलाह का पालन जरूर करना चाहिए। कुछ स्थितियों में IVFCM जैसे उपचार पर विचार कर सकते हैं, क्यों टीकन जी?
2: और मेरी तरफ से एक और संदेश मैं देना चाहूँ, सारी बात आपकी बढ़िया लगी मुझे
1: जी,
2: लेकिन एक बात ये भी है कि खून की कमी को कभी भी लंबा ना खींचना चाहिए, चाहे गर्भावस्था हो या ना हो। लेकिन गर्भावस्था अगर चल रही है तो समय पर जांच करवाना बड़ा जरूरी, स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए और गर्भवती महिला को परिवार का पूरा सहयोग मिलना चाहिए।
0: देखो जी, मैं तो एक बात कहूँ, यो बात याद रखने लायक है, समय पर पहचान और सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य परिणाम संभव हो सके हैं। इसलिए जांच करवाओ और देखभाल बढ़िया सी रखो जी।
1: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और दोस्तों, मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं। अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रसव के बाद की अवस्था यानी PNC के दौरान एनीमिया पर, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद भी माँ का स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, होगी फिर मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सुनते रहिए सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और अब आप सुनेंगे स्मार्ट एनजीओ के तत्वाधान में मिलकर जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं, सेहत सही लाभ कही। और जैसा कि पिछली कड़ी में भी आपने सुना, हम बात कर रहे थे एनीमिया के बारे में, गर्भवती महिलाओं के बारे में। और इस कार्यक्रम को और ज्यादा रोचक और जानकारी से भरपूर बनाने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेहतिया सिंह जी और टीकन देवी जी। दोस्तों, पिछले दो कार्यक्रमों में हमने गर्भावस्था के दौरान खून की कमी यानी एनीमिया, उसकी पहचान, जाँच, IFA MMS, पोषण और मध्यम तथा गंभीर एनीमिया में IVFCM जैसे उपचार और उनके विकल्पों के बारे में बात की। लेकिन आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिस पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है। बच्चे के जन्म के बाद मां का क्या? क्या प्रसव के बाद कमजोरी होना हमेशा सामान्य बात है? क्या खून की कमी प्रसव के बाद भी बनी रह सकती है और इसका असर माँ और नवजात शिशु दोनों पर कैसे पड़ सकता है? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए, जैसे मैंने बताया, सेहतिया सिंह जी और टीकन देवी दोनों हमारे साथ हैं। सेहतिया सिंह जी, अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद कमजोरी होना सामान्य सी बात है, क्या ये ठीक बात है?
1: देखो जी, प्रसव के बाद शरीर को आराम और रिकवरी की बहुत जरूरत होवे है, इसलिए कुछ थकान महसूस होना सामान्य बात हो सके है। लेकिन अगर कमजोरी लगातार बनी रहे, चक्कर आवे, सांस फूलने लगे, रोजमर्रा का काम मुश्किल लगे या महिला बहुत ज्यादा थकी हुई महसूस करे, तो इसे नजरअंदाज कतई ना करना चाहिए जी।
0: यानी ये खून की कमी का संकेत भी हो सकता है?
1: बिल्कुल हो सके जी, और यही कारण है कि प्रसव के बाद भी माँ का स्वास्थ्य पर ध्यान देना घना जरूरी है।
0: टीकन देवी जी, क्या आपके पास ऐसी कोई कहानी है जो हमारे श्रोताओं को इस बात का महत्व समझा सके?
2: बहुत बढ़िया लगता है मुझे जब मैं यहाँ आती हूँ और आपको बताती हूँ कुछ ऐसी बातें जो महिलाओं से संबंधित हैं। और भैया, मैं जब तो एक बात समझ में आई तब मुझसे कहानी सुनो।
0: वो क्योंकि आप बहुत अच्छे से कहानी के द्वारा समझा देती हो।
2: देखो, मैं अपने गांव की शबाना की कहानी आज बताऊंगी।
0: जी जी, सुनाइए। ठीक,
2: देखो, शबाना ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे दिया और इसके चलते घर में हो गए सब खुश।
0: अच्छा।
2: लेकिन कुछ हफ्तों बाद ऐसा हुआ कि शबाना को होने लगी बहुत ज्यादा कमजोरी।
0: ठीक।
2: वो बहुत जल्दी थक जाती थी, बच्चे को गोद में लेके उससे ज्यादा देर खड़ा ना हो जावे। और फिर घर वालों ने कहा अभी अभी बच्चा हुआ तो थोड़ा सा टाइम लग सके। लेकिन जब स्वास्थ्य कर्मी ने आके घर पे उसके हाल चाल पूछा तो आके जांच की उसे सलाह दी।
0: ठीक है।
2: और तब जाके पता चला उसमें तो खून की कमी यानी एनीमिया है।
0: फिर क्या हुआ?
2: फिर क्या, उसे स्वास्थ्य केंद्र से उचित सलाह मिली, परिवार ने भी उसका साथ दिया और धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर हो गई और वो अपने बच्चे की देखभाल अधिक आराम से करने लगी।
0: यानी बच्चे के जन्म के बाद या प्रसव के बाद की कमजोरी को भी गंभीरता से लेना चाहिए। टीकन जी,
2: बिल्कुल लेना चाहिए, मैं तो नू कहूँ बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए।
0: सेहतिया जी, प्रसव के बाद एनीमिया का असर केवल माँ पर पड़ता है या कुछ असर बच्चे पर भी हो जाता है?
1: देखो जी, माँ और बच्चे पे दोनों पे इसका असर पड़ सके, प्रभाव पड़ सके, समझ रहे? अगर माँ लगातार कमजोर रहेगी तो उसकी रिकवरी प्रभावित भी हो सके है।
0: और बच्चे के बारे में, उसके संदर्भ में?
1: देखो, साफ सी बात है, जब माँ स्वस्थ रहेगी तो अपने नवजात शिशु की देखभाल भी बेहतर तरीके से कर पाएगी, इसलिए माँ का स्वास्थ्य और बच्चे का स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जी।
0: यानी स्वस्थ माँ स्वस्थ परिवार की नींव होती है।
1: अजी, बहुत बढ़िया बात कह दीजिए आपने, सही कह दिया आपने।
0: अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या प्रसव के बाद भी जांच करवानी चाहिए?
1: हाँ जी, अगर स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर सलाह दे में या महिला में कमजोरी बने रहे में तो जांच करवाना जरूरी हो जावे है।
0: यानी बच्चे के जन्म के बाद स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क खत्म नहीं होना चाहिए?
1: ना, बिल्कुल ना जी, ऐसा तो ना हो तो बेहतर ही है। गर्भावस्था के दौरान मिली सलाह और प्रसव के बाद भी देखभाल, दोनों मिलकर अच्छे स्वास्थ्य परिणाम देवे ही देवे जी।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। टीकन देवी जी, शबाना की कहानी सुनकर एक बात समझ में आती है कि कई बार महिलाएं खुद भी अपनी परेशानियों को नजरअंदाज कर देती हैं।
2: बिल्कुल कर देती हैं। मैं बताऊं ज्यादातर महिलाएं ऐसी मिलेंगी आपको जो नजरअंदाज कर देवे। असल में प्रसव के बाद अक्सर महिला का जो ध्यान है वो पूरा पूरा चला जाता है बच्चे पे। वो ये सोचती है कि पहले बच्चे की जरूरत है, पहले बच्चा है, उसकी जरूरत पूरी होनी चाहिए, और अपनी तकलीफ को रख देती है वो साइड में कि बाद में देख लेंगे। लेकिन मैं बताऊं ये जो सोच है ना कई बार परेशानी को और ज्यादा बढ़ा देता है।
0: यानी माँ खुद को सबसे आखिर में रख देती है और यही सबसे बड़ी मुसीबत बनती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे समाज की यही बात है जो मुझे बड़ी खराब लगे, और ये बात बड़ी आम भी हो चली। मतलब अगर बच्चा रो रहा है, घर का काम हो, मेहमान आ रहे हो, तो महिला अपनी कमजोरी नहीं देखने की, सही है नहीं दिखने का कि उसे चक्कर आ रहे हैं, थकान आ रही है, वो इन सब के बारे में बताने की भी नहीं, हिचक जाएगी। लेकिन कई बार उसे लगता है कि लोग ये कहेंगे कि उसे ज्यादा परेशानी होती रहे।
0: लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए टीकन जी।
2: बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि जितनी जरूरी बच्चे की देखभाल है उतनी ही जरूरी माँ की भी देखभाल हो।
0: जी सेहतिया सिंह जी, प्रसव के बाद या बच्चे के जन्म के बाद महिला के जीवन में बहुत सारे बदलाव होते हैं, क्या ये भी उसकी सेहत को प्रभावित कर सकता है?
1: बिल्कुल जी, बच्चे के जन्म के बाद महिला की दिनचर्या पूरी तरह से बदल जाती है। रात में कई बार उठना पड़े है, आराम कम हो जाता है, शरीर प्रसव से उभर रहा होता है इस टाइम में, ठीक है, और साथ ही नवजात शिशु की देखभाल की जिम्मेदारी भी माँ की रह पूरी पूरी।
0: यानी ये केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, इसलिए इस समय में परिवार का सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है जी। अगर महिला को आराम का समय मिले, उसकी बात सुनी जावे और उसकी जरूरतों का ध्यान रखा जावे, तो उसकी रिकवरी बेहतर हो सके, मैं कहूँ बढ़िया हो सके।
0: टीकन देवी जी, क्या परिवार कभी जाने अनजाने में ऐसी बातें कह देता है जिससे महिला अपनी परेशानी बताने से बचने लगती है या बताने में हिचकना शुरू कर देती है?
2: ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी।
0: अच्छा,
2: ऐसा बहुत ज्यादा होता है। और जैसे परिवार में कोई ये कह दे, हमारे समय में भी ऐसा ही होता रहा, थोड़ी कमजोरी तो हो गई है, इतना मत सोचा करो, सब ठीक हो जाएगा। या कभी कभी महिलाएं कह दे, तमने अनोखा करा, हम करा ही ना। ये बातें सुनने में बड़ी नॉर्मल सामान्य लग सके, लेकिन इससे क्या होता है, इससे महिला अपनी समस्या ही बताना बंद कर दे।
0: ये बात बिल्कुल गलत है, इसको समाज में ठीक करने की जरूरत है। गर्भवती महिला या बच्चे के जन्म के बाद, प्रसव के बाद महिला की बात को सुनना उसकी देखभाल का हिस्सा है, क्यों टीकन जी?
2: बिल्कुल, इसको उसकी देखभाल का हिस्सा जरूर मानना चाहिए। मतलब अगर कोई महिला बार बार ये कह रही है कि उसे कमजोरी फील हो रही, चक्कर आ रहे, या उसे लग रहा है कि वो पहले जैसी नहीं रही, तो उसकी बातों को सबसे पहले तो गंभीरता से सुनना चाहिए।
0: सेहतिया सिंह जी, क्या प्रसव के बाद, बच्चे के जन्म के बाद स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क बनाए रहना भी जरूरी होता है?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, कई बार लोग सोचते हैं कि बच्चे का जन्म हो गया, अब स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत खत्म होगी, लेकिन ऐसा ना है। प्रसव के बाद भी स्वास्थ्य कर्मी की सलाह, घर पर मुलाकात और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना बड़ा जरूरी है जी।
0: यानी माँ की देखभाल की कहानी प्रसव पर खत्म नहीं होती?
1: ना जी ना, बिल्कुल खत्म ना होती। वास्तव में प्रसव के बाद का समय भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना गर्भावस्था का समय।
0: क्यों टीकन देवी जी, आप क्या कहेंगे?
2: मैं भी यही कहूंगी कि प्रसव पर खत्म नहीं होती बिल्कुल भी माँ की देखभाल, बाद में भी उसकी सेहत और उसका ध्यान बड़ा जरूरी। और इसी बारे में मैं अपने जो श्रोता हैं और जो जिन महिलाओं ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, उनके परिवारों से ये कहना चाहूंगी कि जब घर में नया बच्चा आता है ना, तो केवल बच्चे की खुशियां मत मनाओ, उस माँ का भी ध्यान रखो जिसने उसे जन्म दिया है, और उसकी सेहत, उसका आराम और उसकी जरूरतें भी परिवार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
0: सचमुच आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्वस्थ माँ ही नवजात शिशु को सबसे अच्छा सहारा दे सकती है। टीकन देवी जी, इस समय परिवार की भूमिका क्या होती है, बल्कि क्या होनी चाहिए, ये भी बताइए।
2: देखो ये बात तुमने घनी जोर की पूछी। पहले तो परिवार की भूमिका हो वह बड़ी महत्वपूर्ण। कई बार पूरा ध्यान बच्चे पे चला जा और माँ की जरूरतें ऐसे में पीछे छूट जा। लेकिन परिवार को याद रखना चाहिए कि माँ की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। जिसने उस बालक को जन्म दिया है उसका भी देखभाल करनी उतनी जरूरी।
0: परिवार क्या क्या कर सकता है, मतलब परिवार को क्या क्या करना चाहिए?
2: देखो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि माँ को पर्याप्त आराम मिलना चाहिए, इसका ध्यान परिवार को रखना चाहिए। और दूसरा उसे समय पर पौष्टिक खाना मिलना चाहिए। तीसरा अगर स्वास्थ्य केंद्र जाने की जरूरत पड़ रही है तो परिवार उसके साथ जाए और इसमें परिवार को साथ भी देना चाहिए। इसके आगे बताऊं अगर कोई दवा या पूरा खुराक उसे दी गई हो तो उसे नियमित रूप से लेने में उस महिला की मदद करें। और सबसे जरूरी उसकी कमजोरी या परेशानी को नजरअंदाज ना करें, उसे बिल्कुल भी ऐसे ही न समझे कि यूं तो होता ही रहे।
0: आपने बिल्कुल जरूरी बात बताई और बहुत अच्छी बात बताई। सेहतिया सिंह जी, पिछले कार्यक्रमों में हमने IFA, MMS और IVFCM के बारे में बात की थी, क्या प्रसव के बाद भी डॉक्टर की सलाह का पालन करना जरूरी होता है?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो ऐसा हो है, हर महिला की स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए आगे की देखभाल, दवाओं या पूरा खुराक के बारे में वही सलाह माननी चाहिए जो स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर आपको देवे।
0: यानी अपने मन से ना दवा बंद करनी चाहिए ना ही शुरू करनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात, स्वास्थ्य केंद्र की सलाह सबसे ज्यादा जरूरी होवे है।
0: दोस्तों आज की चर्चा से एक बात साफ हो गई है कि बच्चे के जन्म के बाद माँ की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके स्वास्थ्य को हम पीछे छोड़ दें, क्यों टीकन जी?
2: बिल्कुल सही कह दिया आपने, अगर प्रसव के बाद भी कमजोरी बनी हुई है, अगर उस महिला को चक्कर आ रहे हैं या उसे लग रहा है कि शरीर पहले जैसा नहीं रहा तो उसे बिल्कुल सामान्य मानकर बाद के लिए टालो मत।
1: हाँ जी बिल्कुल सही कह दिया टीकन ने, समय पर जाँच, सही सलाह और उचित देखभाल से माँ को रिकवरी करने में मदद मिले, उसकी रिकवरी बेहतर हो सके इससे। और जब माँ स्वस्थ होगी तो बच्चे की देखभाल भी बेहतर तरीके से कर पाएगी।
0: दोस्तों बहुत अच्छी जानकारी आज हमें यहाँ पर मिली, टीकन देवी जी और सेहतिया सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलते चलते आज के कार्यक्रम की चार महत्वपूर्ण बातें याद रखने योग्य है। पहली, प्रसव के बाद भी खून की कमी बनी रह सकती है, बच्चे का जन्म हो गया खून की कमी हो सकती है, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी, लगातार कमजोरी या चक्कर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तीसरी, जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाइए, आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, माँ को पौष्टिक भोजन, आराम और पूरे परिवार का सहयोग मिलना चाहिए, क्यों टीकन देवी जी?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए।
0: सेहतिया सिंह जी आप क्या कहेंगे?
1: भाई मैं तो नू कहना चाहूंगा, समय पर पहचान और उचित देखभाल माँ और बच्चे दोनों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम ला सके हैं, यही कहना चाहूंगा।
0: जी बहुत अच्छी बात आप दोनों ने कही। इसी संदेश के साथ आज के इस खास कार्यक्रम की इस कड़ी को समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा। फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ, सुनते रहिए सेहत सही लाभ कई, जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ। और ये कार्यक्रम आप सुन पा रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद जय भारत। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: ये एंटिटी है। तो अगर आप लोग यहाँ टॉप में लेफ्ट में देखेंगे तो ये इसके कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट। तीसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जहां पे ये पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो गड़बड़ आइटम होता है, जहां पे इंफेक्शन होता है, उसके आइटम वहां से गुजरते हैं, वहीं पे जाके ये वर्म रहता है। राइट में अगर हम लोग देखना चाहें तो ये मैनिफेस्टेशन है, यानी कि दिखाई कैसे पड़ता है शरीर में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक, बट वी विल बी एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। जिनमें सिम्टम आते हैं उनमें दो तरह की कंडीशन होती है, वन इज एक्यूट यानी कि छोटे समय में सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ गए, क्रॉनिक यानी कि बहुत देर बाद सिम्टम आए और जो देर तक टिकेंगे। एक्यूट में क्या होता है, देर इज फीवर और फीवर के बाद लिम्फेटिक चैनल्स में सूजन आ जाती है, दर्द होता है बहुत तेज, और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। जो क्रॉनिक है उसमें लिम्फेडेमा एक होता है, लिम्फेडेमा एसेंशियली कहाँ होता है, तो लिम्फेटिक चैनल्स में जहां ये एडल्ट पैरासाइट रहते हैं वहां पे लिम्फेटिक चैनल ब्लॉकेज होता है और थोड़ा सा खुल जाता है। चैनल्स खुलने से क्या होता है, फ्लूइड हमारा बाहर आ जाता है और वो धीरे धीरे सूजन पैदा करता है। इट कैन बी योर लिम्स, इट कैन बी आर्म, इट कैन बी लेग। और अगर ये हमारा पुरुषों में जो जननांग होते हैं, स्क्रोटल एरिया होता है, वहां पे ये पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं। ये महिलाओं में ब्रेस्ट में भी हो सकता है, और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, वी कॉल इट एलिफेंटियासिस। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन और होती है, जिन लोगों की किडनी के लिम्फेटिक सिस्टम डैमेज हो जाते हैं, अगर मान लीजिए मुझे बीमारी है और मॉस्किटो इज बाइटिंग मी, और वो मॉस्किटो फिर किसी और को बाइट करेगा, तब ये डिजीज उसको हो सकती है, अदरवाइज ये ट्रांसमिट नहीं होती है। अब आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, राइट पे जो पिक्चर है, इसमें जो लेफ्ट की दो पिक्चर है, ये लिम्फोडिमा है। कितना स्टिग्मा इस व्यक्ति को झेलना पड़ता होगा, जस्ट इमेजिन। और ये बीमारी प्रिवेंटेबल बीमारी है, इससे बचा जा सकता है, ये रीजन है आज हम लोग इस मीटिंग को कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा इस चीज को ध्यान से समझ लें कि फाइलेरिया की बीमारी एक खतरनाक बीमारी है, और जिसको हो जाती है इस कंडीशन में उसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। पर हमने आपको बता दिया है कि ये मच्छरों से फैलती है, तो इसीलिए इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। बस इतना आपको बता दें कि जब मच्छर किसी स्वस्थ इंसान को काटता है तो वो बच्चा माइक्रो फाइलेरिया बेबी उसके अंडर जाता है शरीर में, और वो एडल्ट बन जाता है, मेल एंड फीमेल। और वो मेल फीमेल जब एडल्ट हो जाते हैं, दे मैरी एंड दे प्रोड्यूस बेबीज। वो जो बेबीज होते हैं उनको हम माइक्रो फाइलेरिया कहते हैं। दिन के समय अगर ब्लड टेस्ट किया जाए तो ये माइक्रो फाइलेरिया उस सैंपल में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंटरनल लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारे लंग्स के आसपास का सिस्टम है, वहां छुपा रहता है। ये केवल शाम के समय 8 बजे के बाद, मोस्टली मिडनाइट में, हमारे पेरिफेरल ब्लड में आता है। तो इसीलिए कुछ लोग गलती से ये कर लेते हैं कि दिन में गए, ब्लड टेस्ट कराया, नेगेटिव आया। लेकिन जो गवर्नमेंट सिस्टम है, WHO का सिस्टम है, उसमें हम ये चाहते हैं कि लोग शाम को ब्लड टेस्ट कराएं, और इसको कहा जाता है नाइट ब्लड स्लाइड टेस्ट। कुछ जगहों पे आपने अखबार में पढ़ा होगा कि रात में ये रक्त सैंपल लिया जा रहा है और एक या उससे अधिक लोगों का ब्लड पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब वहां पे ये बीमारी बहुत फैली हुई है। और इसके लिए क्या करना है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दवाएं बढ़ती हैं जिसको सभी लोगों को उसका सेवन करना होता है। इसमें आप देखेंगे जो हरा कलर दिखाई पड़ रहा है मैप में, चलाया जाएगा, उसकी सूची अर्चना जी आपको दे देंगी। मोस्ट प्रोबेबली आप उस जिले या उसके आसपास के जिले के होंगे, इसीलिए आपको इसमें इनवाइट किया गया है। उसे हम कहते हैं DA, ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, और वो अपने क्षेत्र का पूरा प्लान बनाते हैं। जैसे आपको याद होगा पोलियो में एक माइक्रो प्लान बनता था, पोलियो में लोग घर घर जाके ड्रॉप दिया करते थे, लेकिन वहां पे केवल 5 साल के से नीचे के बच्चों को ही दिया जाता था। यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोग्राम में सभी लोगों को हमें ट्रैक करना पड़ता है और सबको देना है दवा, एक्सेप्ट 2 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती माताएं, या कोई बहुत ज्यादा गंभीर बीमार हो। अदरवाइज एवरीबडी हैज टू बी कवर्ड। ये हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है, लेकिन इसके बारे में सबसे कम नॉलेज जनता को है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, आप लोग प्लीज समझिए इस प्रोग्राम को और जितना हो सके इस प्रोग्राम में योगदान दीजिए। क्यों? क्योंकि साल में सिर्फ एक बार होता है, और प्रोग्राम्स तो मान लीजिए कुछ महीनों में रिपीट भी होते हैं, पर साल में सिर्फ एक बार। तो जो व्यक्ति इन दवाओं का सेवन नहीं कर पाया उस समय, वो छूट जाएगा और वो अगले साल तक वेट करना पड़ेगा। एंड द प्रॉब्लम हियर इज, भले ही उसके अंदर सिम्टम ना दिखाई पड़े, बट दैट पर्सन कैन बेसिकली स्प्रेड द डिजीज टू अदर इंडिविजुअल्स। क्योंकि अगर मेरे अंदर है वो माइक्रोफाइलेरिया, मैं हेल्दी दिख रहा हूं, बट इफ द मॉस्किटो बाइट्स मी एंड बाइट समबडी एल्स, तो वो वहां फैल जाए। तो इसमें आप लोग देखिए कैसे वर्कर जाते हैं घर पे, जो लोग घर पे नहीं होते हैं उनके लिए दवाएं नहीं बांटी जाती हैं। पहले क्या होता था, पहले प्रोग्राम में दवाएं बांटी जाती थी। गवर्नमेंट कैन ओनली प्रोवाइड द मेडिसिन, बट वी नीड टू कंज्यूम द मेडिसिन। हम तो यहां तक कहते हैं, अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि ठीक है इस प्रोग्राम की दवाओं पे हमें विश्वास कम है, भले ही ये विदेश से आई हैं और अच्छी दवाएं हैं, कोई बात नहीं, आप जाइए प्राइवेट से खरीद लीजिए, सेम दवाएं अपने डोज के हिसाब से प्राइवेट से ले लीजिए, खा लीजिए, बट प्लीज कंज्यूम कीजिए। ये जो मैसेजिंग है हमें देनी पड़ेगी। सेकेंड, शहरी क्षेत्र में लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, एंड मेनी ऑफ देम फील कि हम क्यों खाएं, हम तो शहर में रहते हैं, हमारे आसपास तो कोई नहीं है, हम तो गुड नाइट कॉयल लगाते हैं, हमारे पास मच्छर काटेगा भी नहीं। बट दे फेल टू अंडरस्टैंड कि वो लोग कभी तो पार्क में निकलते होंगे, कभी तो मार्केट जाते होंगे, क्या वहां मच्छर नहीं काट सकता? और ये जो मच्छर काटता है, ये मच्छर क्यूलेक्स वेराइटी का होता है। मच्छर की फैमिली होती है, चार मुख्य प्रकार होते हैं, उसमें क्यूलेक्स, एडीज, एनोफिलीज, मंसोनिया होते हैं। लोग खाते नहीं थे, तो ये रीजन है लोगों ने दवाएं क्यों नहीं खाई। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब गवर्नमेंट ने ये नियम लगाया कि नहीं, आपको घर में दवा बांटनी नहीं है, सामने खिलानी है, तो ये प्रॉब्लम घट के केवल 27% रह गई। जो सेकेंड कैटेगरी है, अब्सेंट वाली, ये वो लोग हैं जब टीम हमारी घर पे गई है, पीपल वेर नॉट एट होम। तो ये समस्या हमारी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, हर कोई जाएगा अपने काम के लिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई काम नहीं करेगा। लेकिन ये लोग अगर काम करने से पहले अगर दवा खा लें, या काम करने के आने के बाद जाके आशा बहन से मिलके, या किसी भी हमारे मेडिकल जो गवर्नमेंट की पीएससी या सब सेंटर है वहां से खा लें, तो कम से कम वो पार्ट ले लेंगे और वो बच जाएंगे, खुद भी बचेंगे और डिजीज को ट्रांसमिट करने से भी बचेंगे। तीसरी कैटेगरी आप देखिए पर्पल में, 18%, ये रिफ्यूजल वाले लोग। तो यहाँ पे कम्युनिटी रेडियो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आप ये बता सकते हैं कि देखिए आप जो नहीं खा रहे हैं, ये सिर्फ आप अपना घाटा नहीं कर रहे हैं, बेसिकली आप ये पूरे देश का घाटा कर रहे हैं। क्योंकि ये डिजीज एलिमिनेट करनी है भारत से, खत्म करनी है भारत से, और जो व्यक्ति इसमें दवा नहीं खाया उस इलाके का, वो बेसिकली ट्रांसमिट दोबारा कर सकता है उस इलाके में। जैसे कोविड में क्या हुआ था, हर किसी को मास्क लगाने के लिए कहा गया था, हम बचाव की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फाइलेरिया एक बार निम्फोडेमा हो गया, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इंजेक्शन और टैबलेट या सर्जरी नहीं हो सकती जिससे हम पैर की सूजन कम कर सके, हाइड्रोसिल केवल हम ऑपरेट कर सकते हैं, बाकी और में नहीं कर सकते। उसमें अगर आप देखिए बाएं तरफ अनेमिया दिखाई पड़ रहा है, सेकेंड में आपको अंडरवेट यानी कुपोषण दिखाई पड़ रहा है, और नीचे सेंट्रिश की कंडीशन दिखाई पड़ रही है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि भारत में अनेमिया भी बहुत ज्यादा है, कुपोषण भी बहुत ज्यादा है। जो दवाएं दी जाती है इस मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें एल्बेंडाजोल होती है, डीईसी एक होती है, और एक तीसरी कुछ जगहों पे आइवरमेक्टिन होती है। तो जहां जहां एल्बेंडाजोल और डीसी दिया जाता है, एल्बेंडाजोल न केवल फाइलेरिया वाले कीटाणुओं को मारता है, मतलब मार तो नहीं पाता है, कम कर देता है उनका रिप्रोडक्शन, केवल माइक्रो फाइलेरिया को मार पाता है, पर एल्बेंडाजोल जो आंत वाले हमारे कीड़े थे, कृमि, जो मैं पहले बता रहा था आपको, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ, उनको मारता है। तो कम से कम वो जो मैल न्यूट्रिशन है वो भी कम होगा अगर ये दवाएं सब लोग टाइम पे खा लेंगे। अनीमिया का एक मुख्य कारण होता है हुकवर्म, ये हमारे आंतों में रहता है और खून चूसता है। जहां जहां पे ट्रिपल ड्रग थेरेपी है, आइवरमेक्टिन दिया जा रहा है, आइवरमेक्टिन उस हुकवर्म को भी मारती है, यानी कि जो ब्लड सक करने वाले वर्म्स हैं वो भी मर जाएंगे, जिसका बेनिफिट होगा अनीमिया हमारा कम होगा। तीसरी चीज, जहां जहां ट्रिपल ड्रग थेरेपी दी जा रही है वहां पे और बेनिफिट है, जिसे स्केबीज है, जो दाद खाद खुजली हम बता रहे थे आपको, और जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, जो जुए होते हैं, आइवरमेक्टिन से वो भी मर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार की मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रिपल ड्रग में, न सिर्फ फाइलेरिया बल्कि पेट के आंत के कीड़े, खुजली वाले कीड़े, हुकवर्म और जुएं, ये सब भी मर जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को देना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर्स हर घर में नहीं पहुंच पाएंगे और आपको सिर्फ एक चीज कहनी है कि डोंट वेट फॉर हेल्थ वर्कर टू कम टू योर हाउस, यू शुड एक्चुअली अप्रोच टू द हेल्थ वर्कर एंड ट्राई टू गेट द मेडिसिन एज सून एज पॉसिबल। इसको केवल चबा के खाना है, चबा के खाना है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चबा के खाना है। जो दूसरी आप देख रहे हैं बीच में सफेद कलर की, ये आइवरमेक्टिन की गोली है, इसको पानी के साथ लेना है। इसका नियम ये होता है, ये हाइट के हिसाब से होती है, 5 साल से छोटे बच्चों को आइवरमेक्टिन नहीं दी जाती है। 90 सेंटीमीटर के आमतौर पर उनकी हाइट होती है, तो 90 से 120 सेंटीमीटर के लोगों को एक गोली, 120 से 140 तक दो गोली, 140 से 160 तीन गोली, और जो 160 सेंटीमीटर से ऊपर है उसको चार गोली दी जाती है। और जो तीसरी गोली आप देख रहे हैं ये DEC है, ये उम्र के हिसाब से दी जाती है। 2 साल से 5 साल के बच्चे को एक गोली, 5 से 15 साल के बच्चे को दो गोली और 15 से बड़े को तीन गोली। कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है जो एडल्ट होगा उसको मल्टीपल टैबलेट्स मिलेंगी, उसे घबराना नहीं है, वो उसके मिल रही है मल्टीपल टैबलेट्स, क्योंकि उसकी डोजिंग उम्र और वजन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से होती है। कई लोग सोचते हैं कि एक खा लेंगे बाकी छोड़ देंगे और हमारा अभियान में रोल हो गया। तो आप कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से बार बार लोगों को बताइए पूरी डोज लीजिए। आप सोचिए कि फूल झाड़ू से मार ले, क्या होगा, उल्टा आपको आके काट ही लेगा। तो यहाँ पे समझाना है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट को बचाने के लिए डोज पूरी लेनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने इतना साथ दिया, और अब मैं ओपन करता हूं डिस्कशन। अर्चना जी, ओवर टू यू।
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: BA Honors Hindi, BA Honors English, MA Hindi, MA English। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर। अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी। मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
1: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ में।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
3: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं, बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से, और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: आरजीवंशी स्टूडियो है। हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजीवंशी और लेकर हाजिर हूँ बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम, नाम है जिसका सेहत सखी और संसार। ढेर सारी बातें आपसे करती हूँ, संसार की बातें आपसे बताती हूँ, सखियों से बात करती हूँ, तो आपको रखती हूँ बिल्कुल अप टू डेटेड आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी। 9:13 हो गए हैं, 19 अगस्त आज की तारीख है और दिन है आज बुधवार। जी हाँ, मौसम ठीक है, बिल्कुल धूप निकली हुई है, बारिश का कुछ अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बाकी आपके यहाँ पर मौसम के क्या हाल हैं आप मुझे ज़रूर बताएं। नंबर 9639012111 हो जाता है मेरा। और इसी के साथ चलिए दोस्तों, गुड वाली मॉर्निंग है, गुड वाली वाइब है और चलिए गुड वाला थॉट आप तक पहुंचा देती हूँ। तो आज का जो फॉर्मूला है वो कुछ यूँ कहता है, सुनेंगे साथ में। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी भी दूसरों से अपनी तुलना मत करो, आपका मुकाबला सिर्फ आपसे ही होना चाहिए ताकि आप कल जितने बेहतर थे आज उससे और भी ज़्यादा बेहतर बन सके। और ये ना कुछ आदत हमारे यू नो पेरेंट्स में भी होती है या आसपास के नेबर्स में आप देखेंगे, वो ना कंपैरिजन करते हैं आपके बच्चों का अपने बच्चों से या आपके बच्चों का किसी और के बच्चों से। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी होती है, बच्चे को सिखाएं कि अपने आप को आप चैलेंज करें, अपने आप को ही बेहतर बनाने की कोशिश करें बीते हुए दिन से। और ये हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए बड़ा ही ज़रूरी हो जाता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि अगर हम कल कहीं स्टेज पर थे, किसी स्टेज पर थे, तो हम कहीं ना कहीं नेक्स्ट डे अपग्रेड करें अपने आप को। ठीक है, आज के समय में क्योंकि सोशल मीडिया है और चारों तरफ होड़ाहोड़ी मची है, इस वजह से हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से कर भी लेते हैं, दूसरों की सफलता देख लेते हैं, रूप रंग और धनिया जीवन शैली से हम यू नो प्रभावित हो जाते हैं उनकी, और कहीं ना कहीं हम अपने आप को उससे कंपैरिजन कर बैठते हैं। तो ये आदत न केवल हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर बनाती है बल्कि हमें तनाव और निराशा की तरफ भी धकेल देती है। तो ये आदत आपको बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ, उसकी क्षमताएं और जीवन का रास्ता बिल्कुल अलग अलग होता है। एक आम का जो पेड़ है जो यू नो फल देता है, उसकी तुलना गुलाब के फूल से नहीं की जा सकती, इस बात को ध्यान रखिए। और दोनों का अपना अपना महत्व होता है, अपना अपना सौंदर्य होता है, अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखें। इसी के साथ बहुत सारी बातें मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, करूँगी सारी की सारी, बट मीनवाइल हम चलिए पहला गाना अपनी माँ के नाम सुनते हैं, है ना, हमारी माँ, आपकी माँ, सबकी माँ के नाम, ये हम गाना सुनेंगे फ्रॉम द मूवी राजा और रंक। और उसके बाद आई विल बी बैक टू यू, कहीं मत जाइएगा दोस्तों।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. और दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजी वंशी और लेकर हाजिर हूँ आपके वाला प्रोग्राम, नाम है जिसका सेहत सखी और संसार. 9:27 हो गए हैं और 19 आज की तारीख है 19 अगस्त, और फिलहाल दिन है बुधवार. आपको ना कुछ मोटिवेशनल बातें बता रही हूँ ताकि आपका जो दिन है वो बड़ा ही शुभ हो जाए और बहुत ही प्रोडक्टिव हो जाए. देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हर व्यक्ति की कंडीशंस अलग होती हैं, उसकी कैपेबिलिटीज़ और पोटेंशियल अलग होता है, और जीवन का रास्ता यानी कि गोल्स भी अलग अलग होते हैं. जैसे कि एक फलदार पेड़ गुलाब का पुष्प नहीं हमें दे सकता, बिल्कुल वैसे ही सब अपनी अपनी ज़िंदगी में अपनी अपनी एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं, अपनी एक क्रेडिबिलिटी रखते हैं और अपना एक अलग गोल भी रखते हैं ना. तो इसलिए अपने आप को कम ना आके और अपने गोल पर ध्यान लगाएं, ना कि दूसरे की सफलता पर और दूसरे की जर्नी पर. इसी के साथ जब आप खुद को कल से बेहतर बनाने की होड़ में लग जाते हैं तो जो जलन और ईर्ष्या की भावना होती है ना, जो आपके अंदर कभी इनबिल्ट होती है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाती है. आपकी जो एनर्जी है वो दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं आप लगाएं, बल्कि खुद को निखारने में आप लगाएं, और ऐसा जो है परिवर्तन भी देखने को मिलता है जब आप सेल्फ फोकस्ड हो जाते हैं. दूसरों से तुलना करने पर एक बात याद रखिए, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी हो जाती है हमारे साथ जो होती है, वो ये होती है कि हमें हमेशा ही इनसिक्योरिटी जो है वो फील होने लगती है, असुरक्षा की भावना हमारे अंदर बनी रहती है. जबकि जब आप अपने आप पर फोकस रखते हैं, सिर्फ अपने सुधार पर आप काम करते हैं, तो आपका जो मन है वो बड़ा शांत रहता है, आंतरिक शांति आपको मिलती है और सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही है. तो ये बड़ी जो चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी हो जाती हैं. और इसी के साथ आप ना, जो आज का टाइम चल रहा है लस्ट वाला है ना, दूसरों की चमक धमक वाली ज़िंदगी आपको लगती है, और आप जब ऐसा देखते हैं सोशल मीडिया पर, तो आप अपनी असलियत को भूल जाते हैं और उसे असलियत मान लेते हैं. तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें. याद ये रखें आप कि हर कोई अपने ज़िंदगी की सिर्फ अच्छी बातें ही आपसे साझा कर रहा है, दूसरी साइड अभी देखना बाकी है, समझना बाकी है ना. और क्या आज मैंने कल से बेहतर कुछ किया, ये सवाल अपने आप से रेगुलर रात को सोने से पहले ज़रूर पूछें, क्योंकि ये ना मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका हो जाता है अपने ग्रोथ को ट्रैक करने का, है ना. आप इसके लिए एक डायरी भी बना सकते हैं अपनी, उसमें भी लिख सकते हैं सारी की सारी बातें. और एक बात बड़ी ज़रूरी हो जाती है एक्सेप्ट करनी, वो ये कि आपकी कमज़ोरी क्या है. इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, पहचानें और उससे डरें ना उस पर, बल्कि आप काम करें और अपनी पिछली सफलताओं को अपना पैमाना बनाएं. यही है जीवन के मूल मंत्र. चलिए फिलहाल ये गाना आपके लिए, इसके बाद आई विल बी बैक टू यू.

0: यू आर लिसनिंग आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
3: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
2: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
4: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं, बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में,
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
3: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से, और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वंस अगेन वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे हो रही हैं और प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार। इस प्रोग्राम में ढेर सारी बातें आपसे करती हूँ, अपडेट करती हूँ आपको, आज के इतिहास के बारे में अपडेट करती हूँ कि आज आखिर ये दिन क्यों खास हो जाता है। दूसरी चीजें भी आपको बताती हूँ जो एसोसिएटेड होती हैं आपकी हेल्थ से, और साथ ही साथ हम बात करते हैं अपनी सखियों से, माताओं से, बहनों से कि आपकी जो गृहस्थी है उसको आप तरीके से संवार सकती हैं और संजो कर रख सकती हैं। कुछ छोटे छोटे से हैक्स आपके साथ साझा करती हूं और बताती हूं कुछ छोटी छोटी सी ऐसी तरकीब जिनको लगाकर आपकी जिंदगी थोड़ी सी और ज्यादा आसान आपको लगने लगेगी। वेल, अगर आपको भी कुछ बातें मुझसे साझा करनी है तो इसका बहुत ही आसान सा जरिया है, आपको कॉल या मैसेज कर देना होगा 9639012111 पर। और अगर आपका दिल चाहता है कि आपको ये गाना अभी सुनना है तो आप इसके लिए भी मुझसे फरमाइश के लिए भी मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपके घर में किसी का जन्मदिन है, किसी को विश करना है या फिर मेरे थ्रू किसी तक कोई बात पहुंचानी है तो भी आप मुझे जरूर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी फ्रीक्वेंसी की पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं, यानी कि कहीं दूर ट्रेवल कर रहे हैं और हमसे दूर जा रहे हैं, तो इसका भी समाधान हमारे पास है। आपको जाना होगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर जो कि आपको आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आपको सर्च करना होगा आजाद हिंद रेडियो, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा जो कि बहुत ही आसान सा काम है, बच्चा तलक भी उसको इंस्टॉल कर सकता है और उससे आप हमसे बहुत ही आसानी से जुड़ सकते हैं, अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी सारी की सारी बातें, कहानी या बाकी की चीजें भी हमसे साझा कर सकते हैं। इसी के साथ आप हमसे हमारी सोशल हैंडल्स पर कनेक्ट होना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी अपकमिंग शोज के बारे में जानकारी होती है या इन्फॉर्मेशन होती है या हम कुछ ऐसा स्पेशल अगर करने वाले हैं, कवरेज करने वाले हैं, तो उसके संदर्भ में भी हम वहीं पर जानकारी साझा करते हैं। इसके लिए भी आप हमारे सोशल हैंडल्स पर कनेक्ट हो सकते हैं। आप जा सकते हैं मेटा, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर। फिलहाल हम चलेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ और उसके बाद आई बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा, ऐसे ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, मेरे यानी आरजे वंशी के साथ।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। शुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। शुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, शुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं सेहत सखी और संसार मेरे यानी आरजी वंशी के साथ। और चलिए आपको बता दूं कि आज का इतिहास क्या कहता है। अफगानिस्तान ने ब्रिटेन से अपनी पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा आज के दिन की थी 1919 में, और भुवनेश्वर को उड़ीसा की आधिकारिक राजधानी भी बनाया गया था 1949 में। वहीं आपको बता दूं कि सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 5 के जरिए दो कुत्ते जिनका नाम बेलका और स्त्रेलका था और कुछ चूहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया था और उन्हें सुरक्षित भी वापस ला गया था। ये आज के दिन हुआ था साल 1960 में और ये सफल परीक्षण एक रहा था। दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनियों में शुमार, जिसको आप गूगल बाबा के नाम से जानते हैं, उसने शेयर बाजार में अपनी शेयर उतारे थे 2004 में पहली बार आज ही की तारीख पर। दोस्तों, आज का दिन बेहद ही खास हो जाता है। हो सकता है आपके घर परिवार में भी किसी खास अवसर का आज दिन हो, जैसे कि किसी का जन्मदिन हो सकता है, किसी की सालगिरह हो सकती है, शादी की, या कोई अन्य कुछ ऐसा हो सकता है जो आज के दिन को आपके घर वालों के लिए, आपके परिवार के लिए खास बना देता है। अगर ऐसी कुछ बात है तो आप मुझसे बिल्कुल साझा कर सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है 9639012111। और मैं आपको बता दूं कि आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि भारत के 9वें राष्ट्रपति बने थे, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था 1918 में 19 अगस्त को। वहीं जो हिंदी साहित्य के महान निबंधकार रहे हैं, उपन्यासकार रहे हैं और आलोचक भी रहे हैं, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म भी आज के दिन हुआ था साल 1907 में। और जो प्रसिद्ध लेखिका भी रही हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी रही हैं, सुधा मूर्ति, इनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था साल 1950 में। दोस्तों, बहुत सारी बातें मैं आपसे करने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल मैं चाहूँगी कि आप हमसे जुड़ जाइए, अपने दिल की बात कहिए, अपने कुछ और रूटीन आप हमसे साझा कर सकते हैं, या फिर आप आने वाले दिनों में, क्योंकि फेस्टिव सीज़न चल रहा है, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, राखी की क्या तैयारियाँ हो रही हैं, माताएँ बहनें मेरी बता सकती हैं, या फिर आपने कुछ ऐसे आउटफिट्स बनवाए हैं, राखी खरीदी है आपने अभी तक या नहीं, या फिर इस बार आप

हैंडमेड बनाने की सोच रही हैं, ये भी आप मुझे ज़रूर बता सकती हैं। फिलहाल चलिए बहुत ही प्यारा सा गाना इंजॉय करेंगे ये, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, यूं ही सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: Well, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. और दोस्तों ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ. 10:24, 19 अगस्त आज की तारीख, और अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गाना इंजॉय किया जो कि था महबूबा मूवी से, मेरे नैना सावन भादो. मतलब कमाल का गाना किशोर दा की आवाज़ में, है ना. इसी के साथ दोस्तों चलिए अभी ना मैं आपको बता देती हूँ कि आज का दिन क्यों हो जाता है खास. देखिए आज है तारीख 19 अगस्त और आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी. यस, फोटोग्राफी के कला, शिल्प और इतिहास का जश्न मनाने के लिए हर साल आज के दिन ये दिवस मनाया जाता है. इसी के साथ आपको बता दूं कि आज ना वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी कि विश्व मानवीय दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है. इसका जो औचित्य है वो ये है कि मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले कामगारों को श्रद्धांजलि देना और मानवीय सहायता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है. इसी के साथ चलिए आपको ना थोड़ा सा और डिटेल में लेकर के चलती हूँ और बताती हूँ आपको कि अगर बात की जाए वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के बारे में तो इसके पीछे का इतिहास क्या कहता है, क्योंकि आपको पता है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है. ये बात आप बिल्कुल एग्री करेंगे इस बात से. तो इसलिए इस दिन की इम्पोर्टेंस को दर्शाने के लिए ये दिन मनाया जाता है. ये दिन न केवल फोटोग्राफी कला से जुड़े पेशेवरों या शौकीनों को सम्मानित करने के लिए नहीं, बल्कि ये उन पलों को याद करने का भी एक अवसर हो जाता है जो कैमरे के जरिए इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं. एक तस्वीर बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह देती है, है ना. ये अतीत की यादों को ताज़ा करती है, भावनाओं को बयां करती है और सामाजिक मुद्दों को दुनिया के सामने भी रखती है. इसीलिए आज के दिन की जो क्रेडिबिलिटी है और ज़्यादा बढ़ जाती है. अब आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी. देखिए, फ्रांस के लुई डॉगवरे और जोसेफ नाइसफोर निप्से इन दोनों ने मिलकर के क्या किया, 1839 में फोटोग्राफी की इस पहली व्यवहारिक प्रक्रिया को विकसित किया था. और ये बात है 9 जनवरी 1839 की, जब फ्रांस की विज्ञान अकादमी ने इस आविष्कार की घोषणा की थी. और बाद में चल करके 19 अगस्त 1839 को फ्रांसीसी सरकार ने इस आविष्कार को पेटेंट कराकर इसे दुनिया के लिए फ्री टू द वर्ल्ड यानी के सार्वजनिक उपहार के रूप में घोषित कर दिया था. तो है ना कमाल की बात. और अगर आप सोचिए कि कैमरा ना होता, फोटोग्राफी ना होती, तो आप किस तरीके से अपने बचपन को, अपनी यादों को, अपनी उन अनमोल लम्हों को संजो पाते, है ना, जो आप संजो कर रखते हैं आज. और अपनी एल्बम को जब देखते हैं तो आपकी आंखें भर आती हैं, कभी तो आपकी मुस्कान भी झलक पड़ती है. फिलहाल चलिए बहुत ही प्यारा सा गाना ये आपके लिए लेकर आई हूँ. 10:27 हो गई हैं एज़ पर माई स्टूडियो क्लॉक. ये गाना आपके लिए.

0: 9530302.
1: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। शुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। शुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर शुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ। शुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज शुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वंस अगेन वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ। 10:40 हो गई हैं और अभी हमने दामिनी मूवी का बहुत ही प्यारा सा बेहतरीन सा ये गाना इंजॉय किया है ना। इस मूवी के सारे गाने वैसे बड़े प्यारे से हैं, सुरीले से, प्यारे से और सूदिंग से, है ना। चलिए अभी ना हम बात कर रहे थे वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के बारे में, जो कि आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि 19 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके कुछ मैंने आपको हिस्ट्री साझा की थी कि किस तरीके से इसकी शुरुआत की गई। वैसे आपको बता दूं कि साल 2010 में ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर कोर्स के एरा ने पहली बार विश्व स्तर पर 19 अगस्त को ऑनलाइन गैलरी का आयोजन किया था, जिसमें दुनिया भर के फोटोग्राफर्स ने हिस्सा लिया और तब से ये हर साल नियमित रूप से भी मनाया जाने लगा। इसी के साथ अगर डॉक्यूमेंटिंग हिस्ट्री के बारे में बात करें तो कैमरे में हमें इतिहास को सिर्फ किताबों में पढ़ने की बजाय अपनी आंखों से देखने का मौका मिल जाता है। स्वतंत्रता संग्राम, युद्ध और ऐतिहासिक घटनाएं फोटोग्राफी के कारण ही आज भी जीवंत हैं, है ना। हम उसके हिसाब से चीज़ों को देख पाते हैं, उसको उसके ज़रिए से देख पाते हैं इवन। और फोटोग्राफी सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि एक सुंदर सी कला है, या शिल्प हम इसको कहेंगे, क्राफ्ट कहेंगे। एक फोटोग्राफर अपने लेंस के ज़रिए नेचर के सौंदर्य को, इंसानी चेहरों के भाव को और जीवन के संघर्षों को बहुत ही गहराई से कैद करता है। फोटो पत्रकार अगर उनकी बात करें तो उनका दुनिया के कोने कोने में से ऐसी तस्वीरें सामने लाना जो समाज को झकझोर देती हैं और बदलाव की प्रेरणा भी बनती हैं। तो कुछ इस तरीके से एक फोटोग्राफ अपने आप में एक बड़ी अहम चीज़ हो जाती है। और इसीलिए आज यानी कि 19 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। तो आप स्मार्टफोन या फिर AI के इस दौर में फोटोग्राफी जो है हर व्यक्ति की रीच में क्योंकि पहुंच ही चुकी है, तो आज ही आप अपने कैमरे के ज़रिए अपने कोई ऐसा चित्र को खींचे जो आपकी एक सुनहरी याद के रूप में आपको बाद में दिखाई दे, या फिर कोई ऐसी कहानी बयां करती हो वो तस्वीर जो आप दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारे साथ भी साझा कर सकते हैं। वैसे फ़िलहाल चलिए बहुत ही प्यारा सा गाना इज़ वेटिंग फॉर यू, उस गाने को इन्जॉय करेंगे। उस के बाद आई बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा, यू ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।
1: ये है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: पंचायतों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
3: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
2: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
4: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।
5: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
4: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर द मार्स रिजॉर्ट्स। चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: Once again, welcome back to आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ और इसी के साथ मैं आपसे ना आज की हिस्ट्री के बारे में भी बात कर रही हूँ, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की तारीख है 19 अगस्त और आज के दिन ना विश्व फोटोग्राफी डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है और अपनी यादों को संजो कर रखा जाता है उन तस्वीरों में, उन चित्रों में, और जिन्हें देख करके हमारी आंखें कभी कभी भर भी आती हैं और कभी कभी हम प्रफुल्लित भी होते हैं कि वो दिन भी क्या दिन थे, वो समय भी क्या दिन था, समय था, है ना। तो इसीलिए इसी के साथ आपको बता दूं कि आज ना विश्व मानवीय दिवस भी है। यस, आज ना ये भी सेलिब्रेट किया जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों की सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं है। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच्ची है और हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवीय दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के रूप में इसको मनाया जाता है। ये दिन उन साहसी और निस्वार्थ मानवीय कार्यकर्ताओं यानी कि ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स को समर्पित है जिन्होंने संकटग्रस्त क्षेत्रों में, युद्ध प्रभावित इलाकों में, आपदाओं और महामारियों के दौरान लोगों की मदद करते हुए अपनी जान जोखिम में डाली और अपने प्राणों की आहुति भी दी। इसके साथ ही ये दिवस दुनिया भर में जरूरतमंदों को मानवीय सहायता पहुंचाने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर भी माना जाता है। वहीं इसके अगर इतिहास के बारे में बात की जाए या इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात की जाए तो आपको बता दूं कि इसका जो जुड़ाव है बहुत ही पेनफुल और प्रेरणादायक घटना से इसका जुड़ाव है। असल में हुआ क्या था, 19 अगस्त 2003 को इराक की राजधानी बगदाद में कैनल होटल में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर एक भीषण आत्मघाती हमला हुआ था। इसमें बहुत सारे लोग जो है शहीद हो गए थे। इस भयानक त्रासदी में इराक में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो वेरा डी मेलो सहित 22 मानवीय सहायता कर्मियों की मौत हो गई थी और कई अन्य गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। और इस बड़ी क्षति के बाद और मानवीय सेवा में दिए गए अब उनके सर्वोच्च बलिदान को याद रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2008 में एक प्रस्ताव पारित किया और हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवीय दिवस के रूप में मनाने की आधिकारिक घोषणा भी की गई और पहली बार ये जो दिन है वो 19 अगस्त 2009 को मनाया गया था। हालांकि इस दिन को हम जब याद करते हैं तो हमारी आंखें तो ज़रूर भर आती हैं लेकिन एक प्रेरणा भी मिलती है कि किस तरीके से कुछ व्यक्ति हमारे बीच ऐसे भी रहते हैं जो ट्रेजिडी के वक्त सुपर हीरो की तरह आपकी मदद करते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और अपनी जान की परवाह भी नहीं करते, है ना। इसी को तो कहते हैं ह्यूमैनिटी। चलिए अभी खुदा गवाह मूवी का बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय करेंगे, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा, यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए।

0: अब कैंसर से डरिए नहीं। सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
3: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
4: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
3: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
5: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

है हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए। ये मुमकिन है इसी का कर्म।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. तो दोस्तों ढेर सारी बातें लेकर फिर से हाजिर हूँ आपके पास. और टाइम की बात करें तो 11:39 हो गई हैं एज पर माई स्टूडियो क्लॉक. और हम बहुत सारी बातें तो कर ही रहे हैं. इसी के साथ हमारे साथ ना हमारे लिसनर्स भी जुड़ चुके हैं और उनके कुछ फरमाइशें भी आ चुकी हैं. हमारे साथ जुड़ गए हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पॉल डिकेस्ट्रो के साथ विलेज डिकेस्ट्रो. और सहारनपुर से हमारे जुड़ गए हैं शैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सादीब, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और इनके सभी परिवार वाले. तो ये जो अगला वाला गाना हम सुनेंगे, ये हम इनकी ओर से ही सुनेंगे और इनकी फरमाइश पर ही सुनेंगे. बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए लेकर आई हूँ. और इसके बाद हम सुनेंगे डिकेस्ट्रो फ्रेंड्स एंड फैमिली की फरमाइश पर एक बड़ा ही बेहतरीन गाना जो कि उन्होंने फरमाया है, इसके बारे में बिल्कुल आपको बताऊंगी. लेकिन अभी ना हम बात कर रहे थे मानवीय दिवस के बारे में, क्योंकि इस विषय के ऊपर बात ही चल रही थी. तो मैं आपको बता दूँ कि ये दिन उन सभी नायकों को याद करने का होता है जो अपनी जान की परवाह किए बिना भूकंप, बाढ़, अकाल, गृह युद्ध और महामारी जैसे जो विपरीत स्थितियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, उसमें फंसे लोगों की मदद करने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं. उनको एक ये सलाम के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. और इसी के साथ दुनिया के कई हिस्सों में आज भी लोग गरीबी, हिंसा और प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं. और ये दिन वैश्विक स्तर पर उन संकटों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए और सहायता के लिए एकजुट होने का संदेश भी देता है. वहीं आपको बता दूँ, नो मैटर वॉट स्प्रिट की भावना, यस, ये भी ये जागरूक करता है. देखिए, मानवीय कार्यकर्ता किसी भी राजनीतिक या धार्मिक भेदभाव के बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी बाइसनेस के, सिर्फ इंसानियत के नाते मदद करने के लिए पहुंचते हैं. और ये दिन इसी निष्पक्ष भावना का जश्न मनाता है. इसी के साथ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन या विभिन्न संघर्षों के कारण मानवीय सहायता कर्मियों की भूमिका और भी अधिक चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण होती जा रही है. ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि कठिन समय में भी इंसानियत को जिंदा रखना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है और सबसे पहली जिम्मेदारी है. तो इस चीज़ को बड़े आप जहन में रखें. और फिलहाल हम इंजॉय करेंगे कुमार हेड़ा गांव के जो रहने वाले लोग हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत प्यार हमें भेजते हैं, रेगुलर बेसिस पर हमारा प्रोग्राम पसंद करते हैं, सुनते हैं, उनके नाम ये गाना. उसके बाद हम पेश करेंगे डिकेस्ट्रो फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए बहुत ही बेहतरीन, या मैं कहूँ रिक्वेस्टेड गाना. फिलहाल ये गाना आपके लिए दोस्तों.

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
2: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
1: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सेहत सखी और संसार में ढेर सारी बातें तो आपसे कर ही रही हूँ। और फिलहाल ना आपको बता देती हूँ कि आज का दिन क्योंकि खास है, क्योंकि आज हमने दो दिन सेलिब्रेट किए, यानी कि आज हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, साथ ही साथ हमने जाना वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के बारे में भी, तो इसलिए ये खास हो जाता है। बाकी आपके लिए क्यों खास है आज का दिन, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। किसी गाने की फरमाइश करनी है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, या फिर किसी को कोई गाना डेडिकेट करना है तो वो भी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब तक आप मुझसे अपनी बात नहीं साझा करेंगे तब तक वो मज़ा ही नहीं आता है, वो

9701211, और इस नंबर पर आप चाहें तो कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स के थ्रू भी, यानी कि आप जा सकते हैं इंस्टाग्राम पर और वहाँ पर आप हमारे अकाउंट को सर्च कर सकते हैं, आज़ाद हिंद रेडियो नाम से हमारा अकाउंट है।

वादियों में जाएं या फिर केरला की तरफ जाएं, तो कहीं भी आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं। यानी कि आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर और वहाँ पर भी बड़ी ही आसानी से आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसका नाम है आज़ाद हिंद रेडियो। उसको इंस्टॉल करें और उसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं।

हमसे कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, वहाँ पर ये सुविधा भी उपलब्ध है। इसी के साथ चलिए दोस्तों, ये सुविधा तो है ही आपके पास, लेकिन एक और सुविधा है मेरे पास, यानी कि एक बड़ा ही प्यारा गाना है आपके लिए फ्रॉम द मूवी यस बॉस। आपको कौन से गाने की फरमाइश करनी है, लेट मी नो ऑन माई नंबर 9639012111। फिलहाल ये गाना आपके लिए।

एंड वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, बहुत सारी बातें तो आपसे कर ही रही हूँ, और इसी के साथ चलिए आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर सेहत सखी और संसार प्रोग्राम मेरे यानी आर जीवन शी के साथ। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि न्यू बॉर्न बेबी की देखभाल के लिए ना मतलब बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना पड़ता है। अगर आप एक नई नई माँ बनी है तो आपको बड़ा ही संवेदनशील रहना पड़ेगा, और क्योंकि एक्सपीरियंस आपका बहुत ही भावनात्मक चल रहा होगा और कुछ भी चीज़ आपको बहुत जल्द

करना चाहती हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बात। एक तो सबसे पहले ये हो जाता है कि जन्म के तुरंत बाद अगर संभव हो आधे घंटे के भीतर भीतर या एक घंटे के भीतर भीतर शिशु को माँ का पहला काढ़ा पीला दूध जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ज़रूर पिलाना चाहिए बच्चे को, और क्योंकि इससे बच्चे की इम्यूनिटी पावर डेवलप होती है तो ये बड़ा ही ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे माँ का जो है वो सी सेक्शन हो रखा होता है, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चे को फीड कराना इतने कम समय में, तो उस समय में तो फॉर्मूला ही काम करता है। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो

दूसरा उनको जो बैठने की परिस्थिति नहीं बन पाती है और ना ही करवट लेने की परिस्थिति बन पाती है। तो एक नई माँ को इस तरीके से कुछ भी कह करके, ये हमारे यू नो प्राचीन रस्मों से रिलेटेड

बात करें और डील करें सारी इस सिचुएशन से। फिलहाल बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए लेकर आई हूँ, बाकी की बातें भी आपको बताऊंगी, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आजाद हिंदी।

0: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।
1: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
2: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
1: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
3: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
4: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए। छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

बल लिटाकर पीठ पर हल्के हाथों से आपको सहलाना है ताकि वो डकार ले सके। इससे क्या होगा, हवा बाहर निकलती है और बच्चा जो है वो दूध बाहर नहीं उलटता है और उसका जो पाचन है वो भी सही रहता है। और इसी के साथ दोस्तों, शुरुआती 6 महीने जो होते हैं वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड के लिए होते हैं, तो इसीलिए जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ऐसा प्रेफर किया जाता है कि उसको सिर्फ माँ का ही दूध देना चाहिए, बाकी जैसे कंडीशन

स्टार्टिंग के 6 महीने तक नहीं देना है। फिलहाल दिल मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा गाना

0: यू आर लिसनिंग आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: अरे अरे अरे रुको, क्या कर रही हो?
0: क्या कर रही हो मतलब, रात का बासी पानी फेंक कर ताज़ा पानी भर रही हूँ।
1: रात का बासी पानी?
0: जी, अब पीने के लिए तो ताज़ा पानी भरना ही पड़ेगा ना।
1: तुम्हें पता भी है, देश के ना जाने कितने हिस्सों में लोगों को ऐसा पानी नसीब नहीं होता, वो सड़ा हुआ गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और तुम कहती हो बासी पानी, एक दिन में थोड़ी पानी खराब होता है।
0: तो फिर कैसे किया जाए?
1: इस पानी का जहाँ हो सके उपयोग किया जाए, और इस तरीके से फेंका या बहाया तो बिल्कुल ना जाए।
2: क्योंकि ऐसा करना पानी को उड़ेलना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य के साथ खेलना है। जल है तो कल है, पानी बचाइए, भविष्य बनाइए।
3: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: और दोस्तों, इस गाने की फरमाइश आई है आशा जी की ओर से, तो आशा जी ये गाना आपके लिए। और फिलहाल 12:54 हो गई है, तो अभी मेरा हो चला है आपसे इजाजत देने का वक्त। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।

जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन, जिनके कारण हम सभी आजाद हुए। आइए हम सब मिलकर गाएं आजाद हिंद गान और करें देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। जय हिंद।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। आज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में,
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञ।

0: से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

क्यों भाई, फाइव स्टार होटल बना रही है गदरे के साथ? हाँ? बादशाह सराय बनाया करते थे मुसाफिरों के लिए, प्याऊ भी लगाया करते थे प्यासों के लिए। तू पंप लगवा दे, नल लगवा दे बस्ती में, लोग दुआएं देंगे। 50 साल हो गए पानी नहीं दे सके।

0: नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं आपके इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जय जवान जय किसान। शुरुआत करेंगे एक बढ़िया रागनी के साथ और आज का कार्यक्रम बहुत ही खास है क्योंकि आप लोगों की डिमांड पर आज हम बात करेंगे मछली पालन के बारे में। ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जिसे गांव में रहकर कोई भी कर सकता है, कम से कम बजट में कर सकता है, सरकार भी मदद करती है और गांव में रहकर आप ज्यादा कमा सकते हैं। जमीन अगर कम है या आपके पास रोजगार के साधन नहीं है, आप कहीं दूर नौकरी करने नहीं जाना चाहते, आप अपने गांव में इस धंधे को शुरू कर सकते हैं। मछली पालन बहुत ही बढ़िया काम होता है, मतलब इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। आप समझें कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट आप तैयार करेंगे जिसे बेचने कहीं जाना नहीं है, ग्राहक आपके घर से आकर लेकर जाएगा। ज्यादातर चीजें जो फैक्ट्रियों में बनती हैं या कुछ होती है उनके लिए ग्राहक ढूंढना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, लेकिन मछली बकरा और मुर्गा पालन जो होता है इसमें ग्राहक सीधा आपके घर से माल उठाता है और मंडी के रेट पर आपका माल बिक जाता है। तो डिमांड बहुत है, खपत बहुत है, आज इसी बारे में बात।
1: हेरे आँख मस्याही और नजर को डाली वही मार गई यकी

कहने लग्या भाई उसने मेरे प्रति बहुत हमदर्दी करी, मेरे को टाइम दिया समय के अनुसार वो आई, मैंने उसका बहुत धन्यवाद किया, बड़ा उसका शुक्रगुजार हूँ।

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तप कर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान।
1: मेरे देश की धरती,
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान, सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु कृष्ण।

जमीन सूखी हो तो किसान रोता नहीं, मेहनत के पसीने से खेतों को सींचता है। बीज जब धरती में गिरता है तो उससे सिर्फ अनाज नहीं, भारत का भविष्य उगता है। अब वक्त है किसान की ताकत को, उसकी असली आवाज को सुनने का। सुनिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर खेती किसानी का कार्यक्रम जय जवान जय किसान, जहां मिलेगी खेती की नई तरकीबें, सही दाम और संघर्षों से जीतने की कहानियां। क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की रीढ़ है। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ जय हिंद।

0: रेडियो 90.0 एफएम पर मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये कार्यक्रम है जय जवान जय किसान, देसी गाने, रागनिया और पुराने तराने हम यहाँ पर चलाते हैं। आज का हमारा मुद्दा है मछली पालन। दोस्तों, मछली पालन करने वाले बहुत से किसान आपने देखे भी होंगे, कई बार आपके मन में भी आता होगा कि तालाब में पलने वाली इन मछलियों से कितना मुनाफा हो जाता होगा। कम लागत में तगड़ा मुनाफा देने वाला धंधा है ये। इसे सही तरीके से करने पर आप लाखों रुपए से शुरुआत कर सकते हैं, मतलब आपको शुरुआत में लाखों बचेंगे और अगर आप इस काम को बड़ा कर देंगे तो ये मामला करोड़ों तक पहुंच सकता है दोस्तों। इसीलिए आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरी मजे की बात पता है क्या, अगर आपके पास पैसा नहीं भी है ना तो सरकार मदद करती है, बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इस योजना के तहत नया तालाब खोदने के लिए, बायोफ्लॉक सेटअप लगाने के लिए, दाना, फीड, वाहन सप्लाई के लिए खरीदने के लिए, इन सब चीजों पर तकरीबन 40% तक का आपको सब्सिडी मिल सकता है। और अगर मामला यह है कि जो आपका बिजनेस होगा वो किन्हीं महिला, हमारी परिवार की जो बहन बेटियां माताएं होती हैं, उनके नाम पर आप शुरू करते हैं या वो शुरू करती हैं, SC ST वर्ग होता है तो 60% तक की सब्सिडी सरकार देती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, पैसा सरकार देगी, आप काम शुरू करने के बारे में सोचें।
1: और ये बात की समय की

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तप कर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान।
1: मेरे देश की धरती,
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान, सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु कृष्ण।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: नबोली हो मेरे कहते जा करवाले।

सुबह उठते ताता पानी तन कर के कौन नहावेगा। आठ बजे सी बना रसोई तने भोजन कौन खवावेगा। सेवा करके।

ज्यादा गरम कर्या जासे। श्याम हुई जब ठीक बखत पे मटकी बीच भरया जासे। कई बेलो पे मक्खन काट ले।

Lolia. Rai Khan ke, tu hai Lolia, fir khali.

0: नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मछली पालन कैसे करें, कितना लाभ होता है, इसी बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आप सरकार से मदद चाहते हैं तो 40-60% तक की सब्सिडी आपको मिल सकती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इस योजना के तहत आप अपने छोटे खेत में या कहीं जहां पर आपके पास जमीन है वहां पर तालाब खुदवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप तालाब नहीं खोदना चाहते, आपके पास कोई ऐसा प्लॉट है, कोई ऐसी जगह है जहां पर आप शुरू करना चाहते हैं, तो बायोफ्लोक टैंक आते हैं, आजकल आपने देखे होंगे ना, सेटअप आता है, आपको गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है, वो नीले नीले ऐसे आपको तंबू के अंदर गड़े हुए नजर आ जाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी टंकियां होती है, देसी भाषा में समझ लीजिए, बहुत बड़ी बड़ी सेटअप होते हैं, टंकियां होती है, उनमें हजारों हजारों लीटर पानी होता है। आपका एक टंकी का खर्चा तकरीबन 8-10 हजार रुपए मिनिमम बैठ जाता है, और आप एक प्लास्टिक का तालाब बना लिए हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। अब इसके लिए जरूरी नहीं है आपको खेत चाहिए या क्या चाहिए, वो किसी की छत हो सकती है, कोई खाली पड़ा प्लॉट हो सकता है, बस आपको वो टैंक रखने की जगह चाहिए। जितनी जगह है, जितना बजट है, वहां से आप काम शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग भी मिल जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड से आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। केसीसी से आपको जो है थोड़ा कर्जा मिल जाएगा, सरकार दे देगी, वो भी कम से कम ब्याज पर दे देगी, और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। अपने जिले के मत्स्य विभाग के कार्यालय में जाना है और मत्स्य विकास अधिकारी से मिलना है, वो सब कुछ आपको समझा देंगे। इसके अलावा आप ऑनलाइन पोर्टल पर भी जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, pmmsy.dof.gov.in पर आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। मैं सलाह दूंगा अपने जिले के मत्स्य विभाग अधिकारी से जाकर मिले।
1: ये बात की समय की, एक कॉलेज की लड़की एक लड़के से नजर लड़ जाती है।

फिर आख मस्याही और नजर कोडाली वही मार गई यकी हेर काल

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तपकर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान।
1: मेरे देश की धरती,
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान, सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु कृष्णा।

मछली पालन से कैसे करें ज्यादा कमाई, मछली पालन से हो गए करोड़पति, मछली पालन से हो गए लखपति, ऐसी ही वीडियोस आपने यूट्यूब या इंटरनेट पर बहुत सारी देखी होंगी, है ना। मछली पालन सच में एक अच्छा काम होता है, अगर आप अपने गांव में सारी देखी होंगी, है ना। मछली पालन सच में एक अच्छा काम होता है अगर आप अपने गांव में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो पर। मैं वास्तु कृष्ण हूं और इस कार्यक्रम में, इस जय जवान जय किसान कार्यक्रम में, हमेशा गांव में रहकर कैसे ज्यादा कमाई करें, कैसे अपने धंधे को, अपने काम को, बिजनेस को बड़ा करें, इसी बारे में चर्चा करते हैं। आज हमने बात की है यहां पर मछली पालन के बारे में। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे पास तालाब नहीं है, जो गांव में पड़े हुए सरकारी तालाब होते हैं उनका टेंडर छूटता है, वो सबको मिल नहीं पाते हैं। तो देखो, जिसको कुछ करना होता है ना, वो बहाने नहीं ढूंढता, वो रास्ते ढूंढता है, वो रास्ते बनाता है। सरकार आपको पैसा देती है, सब्सिडी देती है, ब्याज देती है, आप अपने खेत में तालाब खुदवा दीजिए। अगर आपके पास खेत भी नहीं है, कोई प्लॉट पड़ा हुआ है, कोई आपके घर में, आपके घेर में जगह है, आप वहां पर बायोफ्लोक सेटअप आते हैं आजकल, प्लास्टिक का टैंक होता है, इसमें आप मछली पालन शुरू कर सकते हैं। जितना आपका बजट है उतने ही टैंक लगा लीजिए और आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप इसके लिए प्रधानमंत्री जो योजना चलती है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PMMSY योजना, इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आप उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते कि कौन इतना ज्यादा कर्जा लेगा, तो आप थोड़ा बहुत पैसा उठा लीजिए, KCC किसान क्रेडिट कार्ड से उठा लीजिए और काम शुरू कर सकते हैं। पानी और तालाब का प्रबंधन गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर भी सरकार इसमें बहुत सी मदद करती है। मैं आपको बहरहाल एक सलाह जरूर देना चाहूंगा कि बिना ट्रेनिंग के काम शुरू मत कीजिएगा। चाहे आप जब आप जाएंगे ना जिला मत्स्य अधिकारी के पास जाएंगे, जहां से आपको ट्रेनिंग मिलेगी, बिना ट्रेनिंग के काम कर देंगे ना, तो आपको फेल होने के चांस बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि मछली के लिए जरूरी वातावरण क्या होता है, कैसे हमें ध्यान रखना है, कैसे नहीं करना है। हमको पता तो होना चाहिए कि हम किस काम

0: उनको कर रहे हैं तो उसका तरीका क्या है, नुकसान के खतरे क्या है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो ट्रेनिंग की सलाह सर्वोपरि है दोस्तों। पहले लीजिएगा ट्रेनिंग, उसके बाद लगाइएगा पैसा, कम पैसे से शुरुआत कीजिएगा और इस काम को फिर बड़ा कर दीजिएगा, यही काम आपको करोड़पति बना देगा।
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: तेरी नाक नकीली हो फटे तू
2: ये
1: तू
2: तू
1: और पनी वजीरा बा और नाक नकीली हो फटे तेरे

0: नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज के जय जवान जय किसान कार्यक्रम में कि आप मछली पालन करके कैसे मुनाफा कमा सकते हैं, अपना बिजनेस आप शुरू कैसे कर सकते हैं। मछली पालन एक अच्छा काम है दोस्तों, कम पैसे में शुरू हो जाता है और गाँव के लोग तो ये सब बड़ी आसानी से कर ही लेते हैं। गाँव के लोग से मतलब हम भी गाँव के हैं, पूरा हिंदुस्तानी ग्रामीण परिवेश है। इस देश में सबसे ज्यादा क्या है, खेती ही तो है। और मछली की ना डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है दोस्तों। आपको बनानी है एक ऐसी चीज जो आसानी से बिक जाए। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई सेटअप लगाते हैं, आपको एक मार्केटिंग की टीम बनानी पड़ेगी। आपको बेचने की टेंशन होगी कि माल बना तो दिए, इसको बेचेंगे कहां। बहुत से लोग करते हैं ना, कोई खिलौने का काम शुरू करता है, कोई कुछ दूसरा काम शुरू करता है, उसको बेचने का टेंशन पहले होता है। मछली में, मुर्गे में और बकरे में बेचने का टेंशन नहीं होता है, क्योंकि जो मंडी के रेट पर आपके घर से ही मंडी के जो लाला लोग होते हैं वो उठा लेते हैं माल को वहीं से, तो ये बहुत आसान होता है। तो मछली पालन आपके लिए लाभकारी शुरुआत हो सकती है। कम पैसे में शुरू कर लीजिए, ठीक है, ट्रेनिंग के साथ में शुरू कीजिएगा और उसमें आपको सारी ट्रेनिंग मिल जाती है कि कौन सी ब्रीड आपको अपने यहां पर लेकर आनी है, कौन सी तरह के बच्चे मछलियां आपको पालनी है, उनकी तैयारी कैसे करनी है, कब किस मौसम में क्या ध्यान देना है, कौन सा दाना खिलाना है, क्या दवाइयां डालनी है, ये सब चीजों की ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी। कौन सी बीमारी आ सकती है, क्या डिजीज है, क्या उनका कंट्रोल करना है, सब कुछ आपको आपकी ट्रेनिंग में पता चल जाएगा। और ट्रेनिंग लेने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसकी मदद से आपको लोन मिलने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। वहीं से आपको पता चल जाता है कि बाजारों में कहां माल बिकता है, कहां इसके जो है खरीदार हैं और वो आपसे कैसे संपर्क करेंगे, आप उन तक कैसे अपनी बात पहुंचाएंगे। तो ये काम की शुरुआत में बस एक ही चीज है, आप तैयार हैं कि नहीं, बस उतना ही है। बाकी ये काम बढ़िया है, आपको ग्रोथ जरूर देगा, ये आप भी जानते हैं।
1: Yeah!

आखिरी कलीमें लेखक महोदय ने बहुत विशेष बात कही कि इन गावणियों के साथ इनकी घराली कैसे रहती।

और आखिरी कली में लेकिन महोदय ने बहुत सोच विचार करके सोची कली में इन गाँवियों के बारे में

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तप कर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान।
1: मेरे देश की धरती,
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान, सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु कृष्ण।

आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

जमीन सूखी हो तो किसान रोता नहीं, मेहनत के पसीने से खेतों को सींचता है। बीज जब धरती में गिरता है तो उससे सिर्फ अनाज नहीं, भारत का भविष्य उगता है। अब वक्त है किसान की ताकत को, उसकी असली आवाज को सुनने का। सुनिए सुभारती आजादी रेडियो 90.0 FM पर खेती किसानी का कार्यक्रम जय जवान जय किसान, जहां मिलेगी खेती की नई तरकीबें, सही दाम और संघर्षों से जीतने की कहानियां। क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की रीढ़ है। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ जय।

नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। आज हमने बात की है यहाँ पर मछली पालन के बारे में। मछली पालन, अगर आप कोई ऐसा काम ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि यार क्या ऐसा करूं कि अगर नौकरी में जिंदगी नहीं चलेगी, कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, दुकान के खोलने के लिए पैसा नहीं है, शहर जाने के लिए थोड़ी परेशानी है, समझ रहे ना। इंसान कब सोचना शुरू करता है ऐसा, जब वो बहुत इरिटेट हो जाता है, अकेला हो जाता है, परेशान हो जाता है, बहुत दरिद्रता, परेशानियां, पीड़ा, मानसिक न जाने क्या क्या इंसान की जिंदगी में आफत होती है, तभी तो आदमी सोचता है कि क्या करें कि अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तो मछली पालन वो काम है दोस्तों जिसकी आप शुरुआत कर सकते हैं। जो भी काम आप करते हैं उसको रोकिएगा मत, उसको बंद मत कीजिएगा, उसको करते करते ही हफ्ते, 10 दिन की, 1 महीना की, 2 महीना की, जितना आप कर सके ट्रेनिंग लीजिए। जब आपको यकीन हो जाए कि हाँ आपको पास प्रॉपर ट्रेनिंग हो चुकी है, फिर आप इस काम में हाथ डालिए। पहले अपने दम पे कीजिए, फिर टीम बड़ी कीजिए, फिर काम को बड़ा कीजिए। काम अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तप कर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान।
1: मेरे देश की धरती,
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान, सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु कृषि।

आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

जय हिंद, वंदे मातरम। सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर आपका फिर से स्वागत है। रागनी, देसी गाने और पुराने तराने यहाँ पर हमेशा आपके लिए चलाता हूँ। मैं वास्तु कृष्णा हूँ। मछली पालन के बारे में बात की है, आपको कुछ कहना है इस बारे में, सुनना है, पूछना है, जानकारी चाहिए तो नंबर 9639012111 है। फिलहाल वक्त हो चला है मेरे जाने का। मछली पालन आप करना चाहते हैं या अभी किसी और काम में व्यस्त हैं, कुछ और सोच रहे हैं, अपने मन की हर बात मेरे साथ में आप शेयर कीजिएगा। या मछली पालन कैसे करना है, इसमें क्या क्या सावधानी और बरतनी चाहिए, वो भी जानकारी हम आने वाले और कुछ कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आएंगे। आपको आज का ये खास कार्यक्रम कैसा लगा? देखिए, हमारी पूरी ये कोशिश रहती है कि आप गांव में रहते हुए दूसरी तरह की कमाई में भी हाथ डालना शुरू करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, होगी फिर मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजी वंशी, और लेकर आई हूं आज आपके लिए बहुत ही खास बातें। लेकिन प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो जानकारी है जो मैं आज आपसे साझा करने वाली हूं, वो स्मार्ट एनजीओ के सौजन्य से है, और इस प्रोग्राम का नाम है सेहत सही लाभ कई, जिसमें हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपकी सेहत से रिलेटेड होती हैं। वहीं आपको हम समय समय पर जानकारी देते हैं कि आप किस तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, या उन महिलाओं के बारे में बात करते हैं जो गर्भावस्था में हैं इस वक्त, और किस तरीके से वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हैं और अपने खाने पीने की ध्यान रख सकती हैं। और साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं कि परिवार किस तरीके से उस महिला की मदद कर सकता है। देखिए, ये सफर बड़ा ही कठिन होता है, तो ऐसे में परिवार की भागीदारी और उनकी जिम्मेदारी काफी मायने रखती है। जैसा कि आपको पता है कि गर्भावस्था के दौरान महिला के स्वास्थ्य का ख्याल रखना माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, तो इसी दौरान शरीर में कई तरीके के बदलाव आते हैं, जिसमें से एक आम समस्या होती है खून की कमी, जिसे हम एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। और अक्सर इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो हम जाने अनजाने ऐसे ही जाने देते हैं, हमें लगता है क्योंकि गर्भावस्था में ऐसा होता ही है, तो ये एक आम बात है। लेकिन दोस्तों, कई बार सिम्टम्स आम होते हुए भी हमें समझ नहीं आता कि वो किस ओर इशारा कर रही हैं। तो चलिए कुछ इस बारे में आज आपसे जानकारी साझा कर देती हूँ। देखो, गर्भावस्था के दौरान जो शरीर में खून की कमी आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि प्लाज्मा की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक, और जिससे हीमोग्लोबिन को बनाए रखने के लिए अधिक आयरन की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को। और आप मानो कि अगर शरीर को पर्याप्त आयरन ही नहीं मिलेगा, तो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो अपने आप कम होता चला जाता है, और इसी कंडीशन को, इसी स्थिति को एनीमिया के नाम से जाना जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जो आम होकर भी आम नहीं होते, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। इस अवस्था में एक महिला को बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो सकती है, कमजोरी उसे महसूस हो सकती है, उसके चेहरे पर नाखूनों या आंखों के नीचे पीलापन आपको देखने को मिल सकता है, उसका सांस फूल सकता है, या उसको बार बार चक्कर आने की समस्या हो सकती है, सरदर्द उसे हो सकता है, और हाथ पांव उसके ठंडे पड़ सकते हैं। और ये वही सिम्टम्स हैं, ये वही संकेत हैं जिन्हें हम अक्सर यूं ही समझकर कि ऐसा तो होता ही है, ये समझकर हम टाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सिम्टम्स को टालना नहीं है, जब भी ये लक्षण आपको दिखाई दे, एक बार जरूर अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर एक बार जरूर अपनी जाँच कराएं, क्योंकि जाँच करा लेंगे तो आपके मन का जो वहम है वो भी निकल आएगा, और साथ ही साथ जो आपकी स्वस्थ होने की अपडेट है वो भी आप तक पहुंच जाएगी। देखो, खून की कमी जो है वो आपके खानपान से होती है। अगर आप अपने खानपान का ध्यान रखेंगे, अपनी सही से देखभाल रखेंगी, तो खून की कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको बस ध्यान देना है अपने आहार पर, और आपका जो आहार होना चाहिए वो होना चाहिए आयरन से भरपूर, जिसमें कि आप पालक, मेथी, चुकंदर और बाकी की जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो जरूर खाएं। साथ ही साथ जो फल होते हैं, खास तौर से अनार, खजूर, मुनक्खा और गुड़, ये भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। और जो आपकी रसोई घर में दालें मौजूद होती हैं, वो तो प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स होती हैं। तो रोजाना नहीं, तो आप एक दिन छोड़ करके दाल जरूर खाएं। काला चना आप खा सकती हैं, वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और राजमा भी बहुत अच्छा रहता है, आयरन से भरपूर रहता है। वहीं आपको बता दूं कि विटामिन सी भी बड़ा ही जरूरी हो जाता है ऐसे टाइम में, तो आयरन को शरीर में अच्छी तरीके से सोखने के लिए विटामिन सी की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए आप नींबू खा सकते हैं, आंवला, संतरा और टमाटर, इसको आप अपने जो खाने की थाली है उसमें जरूर शामिल करें, यानी कि जो खट्टी चीजें होती हैं, जो तासीर जिनका नेचुरली ही खट्टा होता है, आप उसको जरूर खाएं। और आयरन की गोलियां जो डॉक्टर देते हैं उसको आप सही समय पर लें, फॉलिक एसिड सही पर लें, और नियमित रूप से उनका सेवन करें। ऐसे ना करें कि आज हमने खा ली, कल को हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये लापरवाही होती है और इसके जो परिणाम होते हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं होते, और बाद में आपको लगता है कि हमने तो दवाइयाँ खाई थी, लेकिन आप एक शब्द भूल जाते हैं कि क्या आपने नियमित रूप से वो दवाई खाई भी थी या आपने छोटी सी लापरवाही बरती थी अपनी सेहत के साथ। तो अपनी सेहत के साथ कोई भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। इसी के साथ एक बात आपको जरूर बता दूं कि जो महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं और आयरन की गोलियां वो खा रही हैं, उसको आप बिल्कुल भी चाय के साथ ना लें, कॉफी के साथ भी बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आयरन को आपके शरीर में सोखने से रोक लेते हैं। इसे या तो आप सादे पानी से ले सकते हैं या नींबू पानी के साथ आप इसको लेंगी तो और भी अच्छा हो जाएगा। और किस तरीके से आप गर्भावस्था में अपना देख रेख कर सकती हैं और क्या इसके खास तरीके हो जाते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आपको बात बता देती हूँ। आपको सबसे पहले तो नियमित जांच करानी है, यानी कि डॉक्टर से समय समय पर आपको जांच करानी है, ANC विजिट करानी है, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच आपको नियमित रूप से करानी है। साथ ही साथ डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही जरूरी अल्ट्रासाउंड कराने हैं, अपनी मनमर्जी से कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराना है। अपनी जो डाइट है वो आपको बैलेंस लेनी है। प्रोटीन के लिए आप दूध, पनीर, दही, दालें, अगर अंडा खाती हैं तो अंडा भी आप खा सकती हैं। कैल्शियम के लिए, क्योंकि आपके बच्चे के विकास के लिए भी आपको कैल्शियम चाहिए होगा, तो वो आपको दूध और डेयरी उत्पाद से ही मिलता है, तो इसलिए वो आप जरूर खाएं। इसी के साथ दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर आपको पीना है। और दोस्तों एक खास बात और हो जाती है, मैं आपको बता दूं कि रात में कम से कम आपको 8 घंटे की नींद लेना जरूरी हो जाता है और दिन भर में भी आपको समय निकाल करके 1 से 2 घंटे आराम जरूर करना है, क्योंकि जितना आप आराम करेंगी उतना ज्यादा आपका जो शरीर है वो अच्छा महसूस करेगा। और सोते समय एक चीज आपको बड़ी ध्यान में रखनी है, बाईं करवट यानी के लेफ्ट साइड होकर के आपको सोना है। इस पोजीशन को सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे बच्चे तक रक्त संचार अच्छा रहता है। और ये नहीं करना है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप बिल्कुल रेस्ट मोड पर चले जाएं। लाइट एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है, हल्का व्यायाम आपको जरूर करना है। डॉक्टर की सलाह लेकर के आप वॉक यानी के टहल सकती हैं या प्राणायाम भी कर सकती हैं। भारी सामान उठने से आपको बचना है और बहुत ज्यादा जो झुकने वाले काम होते हैं उनसे भी बचना है। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ बातें मैं समय समय पर आपके लिए लेकर आऊंगी। और आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में जो जानकारी आपसे साझा की जा रही है वो स्मार्ट NGO के सौजन्य से आपको कराई जा रही है उपलब्ध। और इस प्रोग्राम का नाम है सेहत सही लाभ कई। अंत में जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। देखो अगर गर्भवती महिला के पेट में तेज दर्द या ब्लीडिंग होती है यानी कि खून आना शुरू हो जाता है, इस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी जैसा आपको महसूस हो रहा है, ऐसे में भी जरूर एक बार अपने डॉक्टर से बात करें। चेहरे या हाथ पैरों पर अचानक से बहुत ज्यादा सूजन आ गई है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से जरूर बात करनी है। और बच्चे की हलचल अगर कम महसूस आपको हो रही है, इस बारे में भी आप जरूर डॉक्टर से बात करें या आप अपने आसपास की आशा या आंगनवाड़ी वाली दीदी से भी बात कर सकती हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं फिर से लौटूंगी ऐसी ही कुछ सेहत भरी बातों के साथ। अभी दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद, बाय बाय। ऐसे ही अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर हमको राणा जी ने इतनी काम की बात बताई है कि अगर आपके घर में टीबी का मरीज हो जाता है तो उसके साथ साथ पूरे परिवार को कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, परहेज रखना है, एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन रखना है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरे परिवार का भी एक ट्रीटमेंट चलता है, वो सरकार की तरफ से पूरी तरह से निःशुल्क होता है। सर, अगर कोई जानना चाहे टीबी के बारे में, ज्यादा जानकारी लेना चाहता, अपना इलाज कराना चाहता है, तो आप लोगों से या सरकारी सिस्टम से वो किस तरह से सहायता प्राप्त कर सकता है?
1: देखिये, वैसे तो पूरे मेरठ को डिसेंट्रलाइज करके सरकार ने हर व्यक्ति के नजदीक में जितने भी सरकारी अस्पताल है सब जगह टीबी की जांच के इलाज की सुविधाएं शुरू की हुई है। बड़े इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, पैरेलल अस्पताल है, वरना कोई जहां भी रहता हो, वो मेरठ में शहर में रहता हो, वो मवाना, वो हस्तनापुर, वो भूड़बराल, वो सरदना, जहां रहता हो उसके ब्लॉक में, उसके आसपास में छोटे बड़े अस्पताल हैं। फिर भी अगर किसी को कोई जानकारी ऐसी लेनी हो तो मैं अपना नंबर यहाँ दोहराने जा रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति निसंकोच टीबी से संबंधित किसी भी समस्या के लिए मुझे फोन कर सकता है और जानकारी ले सकता है। मेरा नंबर है 9917717273। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ अपना नंबर 9917717273। तो कोई भी शंका होने पर, कोई भी जानकारी, किसी भी आवश्यकता में कोई भी आपका श्रोता निसंकोच मुझे फोन कर सकता है।

0: आज के इस खास एपिसोड में आपने देखा और सुना कि टीबी का जो रोग है, सरकार की पूरी कोशिश है कि 2025 तक इसको पूरी तरह से हिंदुस्तान से, हमारे देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए। आप भी अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। और जैसे कि सर ने हमको यहाँ पर अपना नंबर भी बता दिया है, तो अगर कभी आपको टीबी से संबंधित कोई जानकारी लेनी है, इस रोग से संबंधित कोई दवाई कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इलाज कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आप इनको भी फोन कर सकते हैं। सर, आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते आपको कोई संदेश जनता के लिए?
1: बस मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि सभी व्यक्ति सावधानी रखें, खासतौर से टीबी के रोगी अपने मुंह पर कपड़ा लगा के रखें, मास्क लगा के रखें, खांसते छींकते थूकते, और अपना इलाज पूरा करें।
0: जी,
1: इलाज पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आप एक आदर्श नागरिक होने का फर्ज निभाते हैं, आदर्श रोगी होने का फर्ज निभाते हैं।
0: जी।
1: और बाकी सरकार और हम पूरा सिस्टम हमेशा इस रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए सभी के साथ है। और मैं फिर से आजाद हिंद चैनल का धन्यवाद देता हूँ कि इतना जागरूकतापूर्ण कार्यक्रम उन्होंने लिया, अपना समय दिया, और मैं समझता हूँ कि जरूर इस जानकारी से हमारे शहर के, हमारे देश के बहुत लोग लाभान्वित होंगे। धन्यवाद
0: दोस्तों, जुड़े रहिए, सुनते रहिए सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के संग। जय हिंद।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है।

0: में 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
1: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
2: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
1: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
3: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
5: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी। मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
4: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
6: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज। आज तारीख 19 अगस्त है और विश्व मानवतावादी दिवस आज पूरे दुनिया भर में मनाया गया। इस दिन दुनिया भर में मानवीय सहायता कर्मियों और उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है जिन्होंने मानवता की सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी। इसके इतिहास के बारे में बात करें तो साल 19 अगस्त 2003 को इराक की राजधानी बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर हुए एक बम हमले में 22 मानवीय सहायता कर्मी मारे गए थे। इनमें इराक में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि सर्जिया वियरा डी मेलो भी शामिल थे। इन बहादुर लोगों के बलिदान को याद करने और सम्मान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2008 में एक प्रस्ताव पारित किया और 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में नामित किया। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में मानवता की भावना को जगाना है, उन मानवीय कार्यों के महत्व को उजागर करना है जो लोग बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि युद्ध, आपदा और संकटग्रस्त क्षेत्रों में काम करने वाले मानवतावादी कार्यकर्ता किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद करते हैं। भारत में भी इस दिवस का

विशेष महत्व है। हमारा देश आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित होता रहता है। अभी उत्तराखंड के पहाड़ों की साइड की बात कर ले तो वहां पर बहुत ज्यादा लोग समस्या फेस कर रहे हैं। ऐसे समय में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF, स्वयंसेवी संगठन और आम नागरिक मानवीय सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस हमें इन सभी लोगों के योगदान को याद करने और सराहने का अवसर देता है। तो आपको भी जब भी किसी की भी मदद करने का मौका मिले तो अपने कदम पीछे ना हटाएं, बढ़ चढ़कर आगे आएं और मदद करें, क्योंकि आप जब किसी की मदद करेंगे तो आपसे दूसरा इंस्पायर होता है और ये चैन आगे चलती रहती है। फिलहाल सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा

0: रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आंख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ, लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
1: यहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। और आज विश्व फोटोग्राफी दिवस भी रहा। हर साल 19 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। ये दिन फोटोग्राफी की कला, विज्ञान और इतिहास का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य उन फोटोग्राफर को सम्मानित करना है जिन्होंने अपनी कला से दुनिया की खूबसूरती को कैमरे में कैद किया है। इसके पीछे के इतिहास के बारे में भी हम बात करेंगे। आपको जाना कहीं नहीं है, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरशे पंकज। बात चल रही है विश्व फोटोग्राफी दिवस को लेकर। अब इसके इतिहास के बारे में

बात करते हैं। 19 अगस्त साल 1839 को फ्रांस सरकार ने डाग्वेरोटाइप नामक पहली फोटोग्राफी प्रक्रिया का आविष्कार जनता के लिए निशुल्क घोषित किया था। इस प्रक्रिया का आविष्कार फ्रांसीसी लुई डाग्वेरे और जोसेफ नाइसफोर निफ्स ने किया था। इसके बाद आगे बात करें तो पहला आधिकारिक विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त 2010 को मनाया गया। इस दिन लगभग 270 फोटोग्राफरों ने अपनी तस्वीरों को एक वैश्विक ऑनलाइन गैलरी में साझा किया, जिसे 100 से अधिक देशों के लोगों ने देखा। बातें चलती रहेंगी इस बारे में, आप जाइए कहीं मत, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किशोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरशे पंकज और आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। विश्व फोटोग्राफी

दिवस के बारे में हम बात कर रहे हैं, अब इसके महत्व के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए भाई, फोटोज जो होती हैं वो यादों को सहेजने का एक माध्यम होती हैं। फोटोग्राफी हमें बीते हुए पलों और यादों को हमेशा के लिए सहेजने का मौका देती हैं। और एक बात ये है, कला और अभिव्यक्ति का भी एक रूप है। ये एक सशक्त कला का माध्यम है जिसके द्वारा लोग अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोणों को व्यक्त करते हैं। और एक बात यह है कि दस्तावेजीकरण का भी ये काम करते हैं। फोटोग्राफी ने इतिहास, संस्कृति, विज्ञान और समाज को दस्तावेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तभी तो आप देख पाते हैं सभी की फोटोज, पुराने समय की फोटोज, है ना। ये दिन सिर्फ पेशेवर फोटोग्राफर्स के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो अपने स्मार्टफोन या कैमरे से तस्वीर लेते हैं और इस कला का आनंद लेते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि एक तस्वीर वाकई हजारों शब्दों के बराबर होती है। फिलहाल विश्व फोटोग्राफी दिवस पर इतना ही। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। एक अच्छी वाली बात, किसी भी काम को करने में ना तो जल्दबाजी करनी चाहिए और ना ही बाद में काम को करने के लिए टालना चाहिए। सीधा सा मतलब है, आपको जल्दी फैसले नहीं लेने चाहिए। आपको कुछ भी काम करना है उसके बारे में एक बार सोचें जरूर कि क्या इसको करने से हमें फायदा होगा या क्या इसको करने से हमें नुकसान हो सकता है। सोचे जरूर, एकदम जल्दबाजी में किसी भी काम को ना करें। और हाँ, कोई जरूरी काम है तो उस काम को कल के लिए ना टालें, बाद के लिए ना टालें। वो काम जब होना है उसे तभी करें और उसी टाइम में बस कर दें। वेल, ये तो हुई हमारी अच्छी वाली बात। ऐसी ही अच्छी वाली बात आप भी हमें साझा कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर जाकर। बाकी सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: हर वक्त तुम्हारे ही बारे में सोचता मेरा दिल है। नई राह है, नई मंजिल है।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। और जी अभी टाइम है हमारे एक लिसनर की रिक्वेस्ट को पूरा करने का। हमारे ये लिसनर हैं विमल, जिन्होंने कहा है कि सर मुझे अर्श बेनीपाल का सॉन्ग सुनना है जिसका नाम है रंग सांवला, प्लीज प्ले कर दीजिए। तो चलिए अब विमल आपकी रिक्वेस्ट को हम पूरा करते हैं और प्ले करते हैं इस सॉन्ग को, इस ट्रैक को। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज, और जी एकदम लाइव आपसे मेरी यहां पर बातें हो रही हैं। अब यहां पर अपने स्टूडियो में बैठा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, और ये जो मेरा शो है ना, ये मेरे युवा साथी भी बहुत ज्यादा सुनते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि उनकी नॉलेज को बढ़ाऊं, उन तक कुछ अच्छा पहुंचाऊं। और अभी आपकी नॉलेज बढ़ाने का और आपकी नॉलेज टेस्ट करने का भी तरीका मेरे पास है। हाँ जी, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आपसे एक सवाल करने वाला हूँ। इस सवाल का जवाब अगर आपने दे दिया और सही दे दिया, सबसे पहले दे दिया, बिल्कुल करेक्ट दे दिया मतलब, तो आपको मिलने वाला है मेरे साथ हमारे स्टूडियो में आने का मौका और यहाँ पर मेरे शो में बात करने का मौका। मुझसे अपनी कोई भी बात कीजिएगा, अपनी हॉबी के बारे में बात कीजिएगा, अपने टैलेंट के बारे में बात कीजिएगा, कोई भी बात आप कर सकते हैं, लेकिन पहले क्विज का जवाब सबसे पहले दीजिएगा और सही दीजिएगा, जो अभी आपसे मैं करने वाला हूँ। तो जो सवाल है, जो क्विज है, वो ये है कि मैग्नेसाइट जो होता है, इसका रासायनिक सूत्र यानी कि रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, इतना सा बस आपको मुझे बताना है। और आप मुझे जवाब भेज सकते हैं हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर जाकर। तो देर किस बात की, फटाफट से अपना जवाब भेजिए और जवाब सबसे पहले और करेक्ट देकर मौका पाइए मेरे शो में मेरे साथ आने का और यहाँ पर बात करने का। वेट कर रहा हूँ आपके जवाब का मैं हमारे अपकमिंग गाने के साथ। जल्दी जवाब भेजिए।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: संगीत का नया ठिकाना, हर पल एक नया फसाना, आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपकी अपनी पसंद, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

मैं हूँ आपके साथ आपका अपना बिंदास आर जे पंकज। और भाई अभी थोड़े टाइम पहले आपसे एक छोटा सा क्विज किया था, एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहा था आपका, मतलब नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो उस क्विज में, उस टेस्ट में, उस सवाल में मैंने आपसे पूछा था कि मैग्नेसाइट जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो भाई जवाब तो मेरे पास कई सारे आए हुए हैं, उनमें से एक तो जवाब मैं आपको बता देता हूँ, ये जवाब सही नहीं है इसलिए मैं नाम नहीं बता पाऊंगा। तो किसी ने बताया है H2O, किसी ने बताया है NaCO3, किसी ने बताया है O2। मैग्नेसाइट का रासायनिक सूत्र O2, NaCO3, मैग्नेसाइट का रासायनिक सूत्र बताइए। चलिए कोई बात नहीं, हमें इसी के साथ ही साथ सही जवाब भी मिला है। ये सही जवाब हमें भेजा है गीता ने, इन्होंने बताया है कि मैग्नेसाइट का रासायनिक सूत्र MgCO3 है। बिल्कुल गीता, सही जवाब है आपका ये, और आपके इस सही जवाब के लिए आपको मिल रहा है हमारे रेडियो में आने का मौका, हमारे शो में आने का मौका और यहाँ पर बात करने का मौका। तो जल्दी आइए यहाँ पर बात करते हैं, और आप अपनी हॉबी के बारे में बात कीजिएगा, अपने टैलेंट के बारे में बात कीजिएगा। फिलहाल जाइए कहीं मत, सुनते रहिए ऐसे ही आपके अपने रेडियो स्टेशन को, यानी कि आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाए।

0: यादगार द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ।
1: बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपके अपने बिंदास आरशे पंकज को। और भाई देखिए, हमारे शोज में तो यहाँ पर आपसे हमारी ढेर सारी बातें होती रहती हैं। हमारे पास जितना भी समय होता है उस समय में हम कोशिश करते हैं आपसे ज्यादा से ज्यादा बात करने की, आपकी फरमाइशों को पूरा करने की या आपकी कोई बात जो आप हमें बताते हैं उन्हें अपने शो का हिस्सा बनाने की। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शो हमारा पूरा हो जाता है और आपकी बात अधूरी रह जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, शो से पहले या शो के बाद में भी आप हमसे बात कर सकते हैं। कैसे बात कर सकते हैं? आप हमसे बात कर सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स पर जुड़कर। आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से हम आपको मिलते हैं इंस्टाग्राम पर और हम आपको मिलते हैं फेसबुक यानी कि मेटा पर भी। तो वहां पर अभी तक आप कनेक्ट नहीं है तो आपके पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड फोन है, उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप सोशल हैंडल्स यूज करते हैं। तो सोशल हैंडल्स से जब आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे तो आपका और हमारा कनेक्शन जो है वो बना रहेगा शो के बाद भी और शो के पहले भी। तो अभी तक कनेक्ट नहीं है सो कनेक्ट हो जाइए और बातें कीजिए, कुछ हमें बताइए, कुछ हमें सजेस्ट कीजिए हमारे शो से जुड़ा हुआ। बाकी सुनते रहिए ऐसे ही आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए, एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज और आप सुन रही हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। अच्छा, जो लोग अपने ओवरवेट से ज्यादा परेशान होते हैं तो अक्सर वो क्या करते हैं, घर में ही ट्रेडमिल लेकर आ जाते हैं या जिम में जाकर ट्रेडमिल पर रेगुलर भागते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ट्रेडमिल पर कितने बैक्टीरिया होते हैं? आपने ये कभी भी सोचा नहीं होगा, है ना। लेकिन आपको मैं बता दूं, ट्रेडमिल पर टॉयलेट सीट से भी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, और एक दो या तीन गुना नहीं बल्कि 7752 गुना ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। सो इसीलिए जब भी आप ट्रेडमिल यूज करें, उसको अपने हाथों से पकड़ें तो सैनिटाइज करके अपने हाथों को तब पकड़ें, और यूज करने के बाद भी अपने हाथों को जरूर सैनिटाइज करें। फिलहाल सुनते रहिए ऐसे ही आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: OTP किसी को ना बताएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें, आपकी एक गलती बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर क्राइम से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: just
1: आजाद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना पिंदास आरजे पंकज। चलिए जी, करते हैं अभी हम आपसे हमारा आज का क्विज। क्विज में आपको हमें बताना है रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। इतना आसान सा क्विज है, मुझे पता है आपके पास इसका जवाब हो सकता है। तो हमें आप जवाब भेज सकते हैं हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर जाकर, या आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं 9639012111 पर। और हाँ, आपका जवाब अगर हमारे पास सबसे पहले आता है और जवाब चेक करने के बाद बिल्कुल सही निकलता है, तो इसके लिए आपको मिलेगा आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM की ओर से एक सरप्राइज गिफ्ट। तो देर किस बात की, फटाफट से आप हमें अपना जवाब भेजिए। आपके जवाब का हम वेट करेंगे म्यूजिकल ब्रेक के दौरान।
2: हेलो, पापा की जिद के आगे हार गए। शादी हो रही है मेरी, हो सके तो भूल जाना।
3: ऐसे कैसे पूछूं तुम्हें,

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज और आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। और जी अभी थोड़े टाइम पहले आपसे मैंने किया था हमारा आज का क्विज, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। इतना आसान सा क्विज था और इसका

जवाब हमें कई सारे लिसनर्स ने हमारे भेजा है, लेकिन जैसा कि हम चेक कर पा रहे हैं हमारी कंडीशन के मुताबिक, सबसे पहले और सही जवाब हमें भेजा है खुशी ने। इन्होंने बताया है कि रंगोली भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। वेल खुशी, आपका जवाब बिल्कुल सही है और आपने जवाब भी हमें सबसे पहले भेजा है, तो इसलिए आपको मिल रहा है आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM की ओर से एक सरप्राइज गिफ्ट। आप हमारे स्टूडियो आ सकते हैं और अपना सरप्राइज गिफ्ट लेकर जा सकते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

0: सर आपका KYC अपडेट नहीं है, बैंक अकाउंट अभी ब्लॉक हो जाएगा, जल्दी से ये OTP बताइए। क्या आपके पास भी ऐसी कॉल आई है? रुकिए, ये बैंक नहीं फ्रॉड है। KYC अपडेट करने के नाम पर डाकू अब आपके घर नहीं आपके फोन पर आते हैं। एक गलती और आपका बैंक खाता साफ। पहली बात, बैंक कभी भी फोन पर OTP पिन या पासवर्ड नहीं मांगता। दूसरी बात, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। तीसरी और जरूरी बात, कॉल काट कर सीधा अपने बैंक ब्रांच से बात करें। आपकी सतर्कता ही आपकी कमाई को सुरक्षित रखेगी। साइबर फ्रॉड से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।
1: हर चेहरे में तेरा अक्स नजर आता है, क्या कहें तेरे बारे में, तू हर रूप में खूबसूरत नजर आता है।
2: प्रदीप सोनू।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना पेंदास आरशे पंकज। अच्छा, हम जब भी यहां पर आते हैं तो आपसे ढेर सारी बातें कर ही लेते हैं, लेकिन अगर आप हमसे बातें करना चाहें, हमें कोई सजेशन देना चाहें, हम तक कोई अपनी बात पहुंचाना चाहें या अपने किसी फेवरेट ट्रैक को सुनना चाहें तो आप ये कैसे कर सकते हैं? ये कुछ ही को बताया, लेकिन जिनको नहीं बताया उनको अब मैं बता ही देता हूँ। देखिए, आपको क्या करना होता है कि आपको कनेक्ट होना होता है हमसे हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर। आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से हम फेसबुक यानी कि मेटा पर भी हैं, और हाँ, इसके साथ ही साथ हम इंस्टाग्राम पर भी हैं। वहां पर भी आप हमें सर्च कर सकते हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से। और हमारे स्टूडियो का भी नंबर होता है, जो कि होता है 9639012111। इस पर भी आप कॉल या मैसेज करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी कोई रिक्वेस्ट, अपनी कोई बात हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

सिर्फ कागज का टुकड़ा भविष्य नहीं लिखता, आपके हाथों का हुनर लिखता है। कोई काम छोटा नहीं होता अगर उसे दिल से किया जाए। अपनी कला को पहचानिए, उसे तराशिए। हुनर है तो कद्र है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर आप। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

एक कमेंट, सिर्फ एक कमेंट किसी की पूरी हिम्मत तोड़ सकता है। स्क्रीन के पीछे छिपकर नफरत फैलाना आसान है, पर याद रखिए, आपके शब्द किसी का घाव बन सकते हैं। सोचिए, फिर टाइप कीजिए। इंटरनेट को सुरक्षित बनाएं, नफरत नहीं प्यार फैलाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

वो रेड लाइट सिर्फ 60 सेकंड की थी, लेकिन आपकी एक सेकंड की जल्दबाजी किसी का पूरी उम्र का इंतजार बन सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट बोझ नहीं, आपकी सुरक्षा कवच है। जिंदगी आपकी है, इसे सुरक्षित रखिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

ये सिर्फ एक बूंद नहीं है, ये कल की प्यास है। अगर आज हम इसे नहीं रोक पाए तो कल मांगने से भी नहीं मिलेगा। पानी बचाएं, भविष्य सजाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: दन दन

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किशोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स 24 घंटे, डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे, मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

हमारी धरोहर हमारा गर्व है। इन दीवारों पर नाम लिखकर या गुटका थूककर हम इनका नहीं बल्कि अपनी संस्कृति का अपमान करते हैं। ये इमारतें हमारा इतिहास हैं। इन्हें गंदा करके अपना भविष्य धुंधला ना करें, विरासत को सजाएं, बदसूरत ना बनाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

क्या आप अपने घर में कचरा फेंकते हैं? नहीं ना, तो फिर अपने देश की सड़कों को गंदा क्यों करना? एक प्लास्टिक की थैली या एक लिफाफा कचरा शायद आपके लिए छोटा हो, पर हमारी धरती के लिए ये बोझ है। प्लास्टिक को नो कहें और कचरे को सिर्फ कूड़ेदान में डालें। देश को साफ रखें, देश को स्वस्थ रखें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

शक्ति सिर्फ नारों में नहीं हमारे कर्मों में होनी चाहिए। सरहद पर लड़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता, पर एक अच्छा नागरिक बनना हम सबके हाथ में है। आइए शुरुआत करते हैं अपनी रोजाना की आदतों से, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। हम रोजाना बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं और बहुत सारे नहीं कर सकते, तो कुछ काम तो जरूर अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अपने पास हमेशा एक छोटा क्लोथ बैग रखें ताकि बाजार में प्लास्टिक बैग ना लेना पड़े। जी हाँ, जब भी आप बाजार के लिए जाएं तो कपड़े का थैला साथ में हमको जरूर रखकर चलना है। और आपको लगता है कि आप वहां जाकर कुछ खरीदने वाले हैं, तो उसे प्लास्टिक की थैली में ना लेकर अपने साथ लिए गए कपड़े के थैले में लें। इसी के साथ अगर सड़क पर कचरा दिखे और डस्टबिन पास हो तो उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दें। एंड इसके बाद आप अपने हाथ धो लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कूड़ा उठाने से गंदे हो जाएंगे। इसी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक प्लेसेस पर किसी को गंदगी फैलाते देखें तो उन्हें प्यार से जरूर समझाएं कि ये गलत है। एंड घर में छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी अपनी धरोहर और अपने धार्मिक मूल्यों के बारे में जरूर बताएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए। एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

ओटीपी किसी को ना बताएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। आपकी एक गलती बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर क्राइम से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

प्लास्टिक की थैली को खत्म होने में सालों लगते हैं, पर ये हमारी धरती को पल भर में बीमार कर देती है। इसीलिए कोशिश करें और हमेशा कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। प्रकृति बचाएं, प्लास्टिक हटाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

शहर आपका है, घर भी आपका है, कचरा डस्टबिन में डालें, सड़क पर नहीं। स्वच्छता सिर्फ आदत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। चलिए मिलकर अपने शहर को चमकाते हैं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: 長官。
1: बेटी बोझ नहीं घर की शान है, उसे पंख दीजिए, वो आसमान छू लेगी। बेटी को पढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। इसीलिए हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, जिंदगी बचाने के लिए पहनिए। स्पीड पर लगाम, सुरक्षा को सलाम। सुरक्षित रहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आज ग्लास में बचाया हुआ आधा पानी कल किसी की प्यास बुझा सकता है। बूंद बूंद से सागर बनता है और बूंद बूंद से ही जिंदगी। इसीलिए पानी बचाइए, कल बचाइए। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हमारे शहर की धड़कन, हमारी अपनी आवाज, आपके हर संगीत की फरमाइश को हम पूरा करते हैं, इसीलिए कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

ट्रैफिक जैम का गुस्सा अब गानों में निकालो, रेड लाइट हो या लंबा रास्ता, हम हैं आपके बेस्ट ट्रैवल पार्टनर। आज ही डाउनलोड करें आजाद हिंद रेडियो ऐप और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

रंग रूप या वजन, इनको लेकर किसी का मजाक ना उड़ाएं। हर इंसान अपने आप में खास है। खूबसूरती दिल में होती है, दिखावे में नहीं। सकारात्मकता फैलाइए, नकारात्मकता नहीं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

नंबर्स ही सब कुछ नहीं होते। बच्चों पर प्रेशर नहीं, उनका भरोसा बनिए। उन्हें खेलने दीजिए, उन्हें खिलने दीजिए। स्ट्रेस फ्री बचपन, बेहतर भविष्य। तो बस सही समय पर सही तरीके से पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

शादी हो या पार्टी, उतना ही लें थाली में कि फेंका ना जाए नाली में। आपकी फेंकी हुई एक रोटी किसी भूखे का पेट भर सकती है। खाना बचाइए और उसे जरूरतमंदों तक पहुंचने दीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

कमाई कितनी भी हो, बचत जरूरी है। छोटी छोटी बचत ही बुरे वक्त का सहारा बनती है। इसीलिए अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा आज ही बचाना शुरू करें। आज ही इन्वेस्ट करें, कल को सुरक्षित करें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

गर्मी हो, सर्दी हो या हो बारिश, इन सब में बेजुबान भी तकलीफ से गुजरते हैं। अपनी छत पर थोड़ा पानी और रास्ते के बेजुबानों के लिए थोड़ा खाना जरूर रखें, क्योंकि इंसान वही जो हर जीव का दर्द समझे। इसी प्यारे संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हॉस्पिटल हो या स्कूल या फिर ट्रैफिक जैम, बेवजह हॉर्न बजाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि शोर से सुकून नहीं मिलता, सिर्फ बेचैनी बढ़ती है। शांति बनाए रखें, शहर को बहरा ना बनाएं। नो हॉन्किंग प्लीज। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

सर आपका KYC अपडेट नहीं है, बैंक अकाउंट अभी ब्लॉक हो जाएगा, जल्दी से ये OTP बताइए। क्या आपके पास भी ऐसी कॉल आई है? रुकिए, ये बैंक नहीं फ्रॉड है। KYC अपडेट करने के नाम पर डाकू अब आपके घर नहीं आपके फोन पर आते हैं। एक गलती और आपका बैंक खाता साफ। पहली बात, बैंक कभी भी फोन पर OTP, पिन या पासवर्ड नहीं मांगता। दूसरी बात, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। तीसरी और जरूरी बात, कॉल काट कर सीधा अपने बैंक ब्रांच से बात करें। आपकी सतर्कता ही आपकी कमाई को सुरक्षित रखेगी। साइबर फ्रॉड से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: हर फॉरवर्ड मैसेज सच नहीं होता। बिन सोचे समझे कोई भी खबर शेयर ना करें, ये किसी की मुश्किल बढ़ा सकता है। पहले जांचिए फिर मानिए। अफवाहों पर लगाम लगा के एक अच्छे भारतीय नागरिक बने, इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।
1: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से चुपके, तुमने ऐसी बात कही दिल मेरा

एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

ये सिर्फ एक बूंद नहीं है, ये कल की प्यास है। अगर आज हम इसे नहीं रोक पाए तो कल मांगने से भी नहीं मिलेगा। पानी बचाएं, भविष्य सजाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

वो रेड लाइट सिर्फ 60 सेकंड की थी, लेकिन आपकी एक सेकंड की जल्दबाजी किसी का पूरी उम्र का इंतजार बन सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट बोझ नहीं, आपकी सुरक्षा कवच है। जिंदगी आपकी है, इसे सुरक्षित रखिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

एक कमेंट, सिर्फ एक कमेंट किसी की पूरी हिम्मत तोड़ सकता है। स्क्रीन के पीछे छिपकर नफरत फैलाना आसान है, पर याद रखिए, आपके शब्द किसी का घाव बन सकते हैं। सोचिए, फिर टाइप कीजिए। इंटरनेट को सुरक्षित बनाएं, नफरत नहीं प्यार फैलाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

सिर्फ कागज का टुकड़ा भविष्य नहीं लिखता, आपके हाथों का हुनर लिखता है। कोई काम छोटा नहीं होता अगर उसे दिल से किया जाए। अपनी कला को पहचानिए, उसे तराशिए। हुनर है तो कद्र है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर आप। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

संगीत का नया ठिकाना, हर पल एक नया फसाना। आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपकी अपनी पसंद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए। एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

OTP किसी को ना बताएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। आपकी एक गलती बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर क्राइम से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

एक प्लास्टिक की थैली को खत्म होने में सालों लगते हैं, पर ये हमारी धरती को पल भर में बीमार कर देती है। इसीलिए कोशिश करें और हमेशा कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। प्रकृति बचाएं, प्लास्टिक हटाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

शहर आपका है, घर भी आपका है, कचरा डस्टबिन में डालें, सड़क पर नहीं। स्वच्छता सिर्फ आदत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। चलिए मिलकर अपने शहर को चमकाते हैं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

बेटी बोझ नहीं घर की शान है, उसे पंख दीजिए, वो आसमान छू लेगी। बेटी को पढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। इसीलिए हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, जिंदगी बचाने के लिए पहनिए। स्पीड पर लगाम, सुरक्षा को सलाम। सुरक्षित रहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आज ग्लास में बचाया हुआ आधा पानी कल किसी की प्यास बुझा सकता है। बूंद बूंद से सागर बनता है और बूंद बूंद से ही जिंदगी। इसीलिए पानी बचाइए, कल बचाइए। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हमारे शहर की धड़कन, हमारी अपनी आवाज, आपके हर संगीत की फरमाइश को हम पूरा करते हैं। इसीलिए कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

ट्रैफिक जैम का गुस्सा अब गानों में निकालो। रेड लाइट हो या लंबा रास्ता, हम हैं आपके बेस्ट ट्रैवल पार्टनर। आज ही डाउनलोड करें आजाद हिंद रेडियो ऐप और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

रंग रूप या वजन, इनको लेकर किसी का मजाक ना उड़ाएं। हर इंसान अपने आप में खास है। खूबसूरती दिल में होती है, दिखावे में नहीं। सकारात्मकता फैलाइए, नकारात्मकता नहीं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

नंबर्स ही सब कुछ नहीं होते। बच्चों पर प्रेशर नहीं, उनका भरोसा बनिए, उन्हें खेलने दीजिए, उन्हें खिलने दीजिए। स्ट्रेस फ्री बचपन, बेहतर भविष्य। तो बस सही समय पर सही तरीके से पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

शादी हो या पार्टी, उतना ही लें थाली में कि फेंका ना जाए नाली में। आपकी फेंकी हुई एक रोटी किसी भूखे का पेट भर सकती है। खाना बचाइए और उसे जरूरतमंदों तक पहुंचने दीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

कमाई कितनी भी हो, बचत जरूरी है। छोटी छोटी बचत ही बुरे वक्त का सहारा बनती है। इसीलिए अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा आज ही बचाना शुरू करें। आज ही इन्वेस्ट करें, कल को सुरक्षित करें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

गर्मी हो, सर्दी हो या हो बारिश, इन सब में बेजुबान भी तकलीफ से गुजरते हैं। अपनी छत पर थोड़ा पानी और रास्ते के बेजुबानों के लिए थोड़ा खाना जरूर रखें, क्योंकि इंसान वही जो हर जीव का दर्द समझे। इसी प्यारे संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हॉस्पिटल हो या स्कूल या फिर ट्रैफिक जैम, बेवजह हॉर्न बजाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि शोर से सुकून नहीं मिलता, सिर्फ बेचैनी बढ़ती है। शांति बनाए रखें, शहर को बहरा ना बनाएं। नो हॉन्किंग प्लीज। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
1: देशभक्ति सिर्फ नारों में नहीं, हमारे कर्मों में होनी चाहिए। सरहद पर लड़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता, पर एक अच्छा नागरिक बनना हम सबके हाथ में है। आइए शुरुआत करते हैं अपनी रोजाना की आदतों से, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हर फॉरवर्ड मैसेज सच नहीं होता। बिन सोचे समझे कोई भी खबर शेयर ना करें, ये किसी की मुश्किल बढ़ा सकता है। पहले जांचिए फिर मानिए। अफवाहों पर लगाम लगा के एक अच्छे भारतीय नागरिक बने, इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

ये सिर्फ एक बूंद नहीं है, ये कल की प्यास है। अगर आज हम इसे नहीं रोक पाए तो कल मांगने से भी नहीं मिलेगा। पानी बचाएं, भविष्य सजाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

वो रेड लाइट सिर्फ 60 सेकंड की थी, लेकिन आपकी एक सेकंड की जल्दबाजी किसी का पूरी उम्र का इंतजार बन सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट बोझ नहीं, आपकी सुरक्षा कवच है। जिंदगी आपकी है, इसे सुरक्षित रखिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

एक कमेंट, सिर्फ एक कमेंट किसी की पूरी हिम्मत तोड़ सकता है। स्क्रीन के पीछे छिपकर नफरत फैलाना आसान है, पर याद रखिए, आपके शब्द किसी का घाव बन सकते हैं। सोचिए फिर टाइप कीजिए। इंटरनेट को सुरक्षित बनाएं, नफरत नहीं प्यार फैलाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

सिर्फ कागज का टुकड़ा भविष्य नहीं लिखता, आपके हाथों का हुनर लिखता है। कोई काम छोटा नहीं होता अगर उसे दिल से किया जाए। अपनी कला को पहचानिए, उसे तराशिए। हुनर है तो कद्र है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर आप। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हॉर्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
7: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट लीला माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में माखन चोरी करने जाते थे और गोपियां शिकायत करने आती थी यशोदा के पास कि यशोदा तुम्हारे बेटे ने हमारे घर में बहुत उपद्रव किया, बहुत नुकसान कर दिया। तो यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, उनसे कहती, कन्हैया ये सब क्या करके आए हो, देखो सब तुम्हारी शिकायत करने आई है। तो कन्हैया बड़े भोलेपन से मुस्कुरा के कह देते, मां इन सब की बातें मत सुनना, ये सब झूठ बोल रही हैं, ये तो सब बहाना बना के आई है मुझे देखने। बस बात वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में अचानक मां पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया।

और ऐसे ऐसे तक दिए कि अंत में सिद्ध कर दिया उसने माखन नहीं खाया। यहां तक कि मां से भी कहलवा लिया, हां बेटा तूने माखन नहीं खाया। यही सुंदरता है इस भजन में। सबसे पहला तर्क दिया, बोले मां तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैंने माखन खाया है, मेरे पास समय ही कहां है जो मैं माखन खाऊं।

हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषता है कि रागों की रचना हुई है समय के अनुसार, अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं, मौसम तक के राग हैं। यहां वर्णन है भोर और सांझ दो समय का। नियम के अनुसार दोनों के अलग अलग स्वर होते हैं। आप ध्यान दें, मैं आपको भोर भोर के स्वरों में और सांझ सांझ के स्वरों में सुना रहा हूं। मेरा प्रयास है शायद आपको लगे कि ये भोर है और ये सांझ है।

नहीं चला यह तर्क। दूसरा तर्क दिया, कहने लगे मां जरा सोचो, मैं इतना छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ हैं मेरे, मैं कैसे माखन चुरा के खा सकता हूं।

माँ मुस्कुरा दी, इशारा किया, कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है ये कैसे लग गया। कन्हैया ने सोचा ये तो बड़ी भूल रह गई,

घर की। अब कन्हैया ने सोचा कि माँ की थोड़ी खुशामद करते हैं, तारीफ करते हैं तो शायद मान जाएगी, खुश हो जाएगी, क्षमा कर देगी। अब देखिए, स्वर, लय, भाव, शब्द, इन सब की सहायता से ये दिखाना है कि कन्हैया माँ की खुशामद कर रहे हैं।

कोई असर नहीं हुआ। अब थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे, मां एक लाठी और एक कंबल मुझे दे दिया है और सुबह सुबह भेज देती हो गाय चराने, कल से ये काम मुझसे नहीं होगा।

विशेष बात हो गई, मां कुछ ज्यादा कठोर हो गई थी। कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई मां नहीं सुन सकती, वो तो यशोदा थी। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए और मां की ओर देख के बोले, मां ये माखन की बात नहीं है, ये माखन का तो तुमने बहाना लिया है। तुम्हारे मन में क्या है आज मैं जान गया। और बोले,